0: कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे की 6:05 और 10 सेकंड ये समय है चिंतन का। तो आइए सुनते हैं चिंतन।
3: जिस प्रकार किसी मकान में हवा और रोशनी आने के लिए खिड़कियां और रोशनदान होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए किताबें होना जरूरी है। किताबें कई प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जैसे धर्म ग्रंथ हमें संस्कारवान बनाते हैं, वहीं इतिहास से संबंधित किताबें हमें हमारे गौरवशाली अतीत से रूबरू करवाती हैं। स्कूल और कॉलेज की किताबें हमें सामान्य ज्ञान के साथ ही हमारे जीवन को व्यवस्थित करती हैं और हमें विकास के पथ पर आगे ले जाती हैं। वास्तव में किताबें पढ़कर हमारा विवेक जागृत होता है और हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। जब तक हमें अक्षर ज्ञान नहीं होता, तब तक हर पठनीय सामग्री हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए पढ़ना आने के बाद हमें बाल्यकाल से ही किताबों की दुनिया में रहने का अभ्यास कर लेना चाहिए। किताबों में ज्ञान का अथाह भंडार छिपा हुआ है और जितना हम पढ़ते जाते हैं उतनी ही ज्ञान चक्षु हमारे खुलते जाते हैं। संसार के महान आश्चर्यों के बारे में हम पढ़कर ही जान पाते हैं। कई बार हम नहीं पढ़ने के कई बहाने बनाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मनुष्य ताउम्र विद्यार्थी बना रह सकता है। एक समय आपको ये लगता है कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, लेकिन ये एक भ्रम है, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं और हमें लगातार पढ़ने के लिए दुनिया भर की किताबें आकर्षित कर रही हैं। जितना अधिक हम पढ़ेंगे उतना ही अच्छा हम लिख भी पाएंगे।

0: बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लिए किताबें हमारे सच्चे दोस्त साबित होती हैं। इसलिए नौकरी के लिए नहीं, जीवन को संस्कारित करने के लिए भी हमें किताबें पढ़ते रहना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में करते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं सुप्रभात। कहते हैं कि जब हम त्याग का एहसास कर लें तो मोह का असर अपने आप खत्म हो जाता है, तो बस जिंदगी में कई बार अपने लिए और अपनों के लिए त्याग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम त्याग करेंगे तभी तो हमारे रिश्ते पनपते हैं और साथ ही साथ सुख दुख में भला कौन किसके काम ना आए। सभी एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे के सुख दुख को अपना माने, तभी जिंदगी के रिश्ते भी परिपक्व होते हैं और साथ ही साथ जिंदगी का सही मतलब भी हम समझ पाते हैं। इसी सुविचार के साथ आज के वंदना कार्यक्रम की शुरुआत इस भक्ति रचना के साथ

एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक

प्रेम मग्न हो रास्ते भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं पर्दों और सुंदर चमरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरों हल्दी दूध दही अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन केशर कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारी प्रातःकालीन सभा में शेष व सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती नी बात। 6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। 7:30 10 बजे व 12 बजे समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 व 11 बजे समय रहेगा सुगम संगीत का। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सायंकालीन सुबह में 5:05 पर आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। 5:30 व 9 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार व 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 7 समय रहेगा बैरानी बात कार्यक्रम का। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या व 11 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10 समय रहेगा फिल्म संगीत का

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण, अब आप सुनेंगे खेतनी बात कार्यक्रम।
1: खेतनी बात कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाइयों ने मान जी बहनों राम राम। किसान भाई, आज आपने बात करूंगा एक एवं महत्वपूर्ण विषय पर जिन बारा में आपने जानकारी रखनी बहुत आवश्यक है। किसान भाई, आपने खेती करो, अच्छू बीज लाओ और बीज नी बुवाई बाद आपने उम्मीद करो कि आपने नाम थी कि अच्छू उत्पादन मिले, अच्छी पैदावार मिले और हर किसान आपका पूरा प्रयास करे कि इन्हीं जो फसल है इना इन्हें उत्पादन अच्छू मिले, इन्हीं पैदावार बढ़िया मिले।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना चंपा मेथी व साथियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, और वार्ताकार हैं प्रभा नगावत।
1: संगीत और कला का मानव जीवन में अत्यंत गहरा संबंध है। सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य ने अपने भावों, अनुभवों और संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए विभिन्न कलाओं का सहारा लिया है। कला और संगीत केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, विचार और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

एक संतुलित मन, शांत भावनाएं और सकारात्मक दृष्टिकोण, यह सब किसी न किसी रूप में संगीत और कला के संपर्क से ही संभव होते हैं। संगीत को मन की औषधि कहा जाता है। जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारी मस्तिष्क तरंगे, लय और सुर के साथ तालमेल बनाती है। इससे मन में शांति और सुकून की अनुभूति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जब हम संगीत सुनते हैं तो मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं, जो प्रसन्नता, उत्साह और स्फूर्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। थकान, तनाव या उदासी के समय मधुर संगीत तुरंत हमारे मन को शांत कर देता है। धीमी लय वाले गीत हमारी धड़कनों को नियंत्रित करते हैं, रक्तचाप को संतुलित रखते हैं और नींद में भी सहायता करते हैं। दूसरी ओर संगीत हमें जोश, प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य का मन बहुत संवेदनशील होता है। रोजमर्रा की भागदौड़, पढ़ाई का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी और सामाजिक चुनौतियां अक्सर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ऐसे समय में संगीत और कला हमारे मन को संभालने, शांत करने और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन समय से लेकर आज के आधुनिक युग तक हर संस्कृति में संगीत और कला को मानसिक शांति का साधन माना गया है। संगीत ऐसी भाषा है जिसे हर व्यक्ति समझ सकता है। जब हम कोई मधुर धुन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक खुशी का हार्मोन बढ़ता है, जिससे मन प्रसन्न होता है। धीमा और हल्का संगीत तनाव को कम करता है। पसंदीदा गाने सुनने से गुस्सा और चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। पढ़ाई के बाद थकान महसूस हो तो कुछ समय संगीत सुनने से दिमाग फिर से तरोताजा हो जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संगीत सुनने से दिल की धड़कन सामान्य रहती है और मानसिक दबाव कम होता है। कई बार हम अपनी भावनाएं किसी से कह नहीं पाते, ऐसे में चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला, लेखन या अन्य कलाएं हमारे भीतर की भावनाओं को बाहर लाने का माध्यम बनती है। पेंटिंग बनाने से मन में शांति का अनुभव होता है, नृत्य से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन खुश हो जाता है। किसी भी प्रकार की कला हमें अपने विचारों की सकारात्मक दिशा देती है। कला के माध्यम से व्यक्ति खुद को बेहतर समझ पाता है और मन की उलझनें कम होती है। जब हम कोई कला सीखते हैं, जैसे गायन, वादन, चित्रकला या नृत्य, तो हमें अपने अंदर एक नई क्षमता का एहसास होता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मंच पर प्रदर्शन करने से डर और हिचक कम होती है। नई कला सीखने से दिमाग सक्रिय और उत्साहित होता है। आत्मविश्वास बढ़ने पर मानसिक तनाव अपने आप कम हो जाता है। संगीत और कला सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ाता है। यह लोगों को जोड़ता है। एक साथ गाना गाने या ग्रुप में नृत्य करने से दोस्ती और टीम वर्क की भावना बढ़ती है। कला प्रदर्शनी, संगीत कार्यक्रम या नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने से व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय हो जाता है। सामाजिक जुड़ाव मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है और अकेलापन दूर करता है। संगीत मानसिक बीमारियों में भी सहायक है। आजकल कई डॉक्टर म्यूजिक थेरेपी और आर्ट जैसी कला का भी उपयोग करते हैं, जिसमें अवसाद, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं कम होती है। संगीत दिमाग को शांत करके नकारात्मक विचारों को कम करता है। कला मन में छिपे तनाव को बाहर लाने में मदद करती है। यह उपचार बिना दवाइयों के एक स्वाभाविक और सुरक्षित तरीका है। आज के समय में बच्चे और बड़े दोनों को एकाग्रता की समस्या होती है। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया और तनाव के कारण दिमाग जल्दी थक जाता है। ऐसे में संगीत और कला दिमाग को फिर से केंद्रित करने में मदद करते हैं। हल्का वाद्य संगीत पढ़ाई के समय एकाग्रता बढ़ाता है। चित्र बनाना या कोई रचनात्मक कार्य करना दिमाग को आराम देता है, जिससे नई पढ़ाई याद रखना आसान हो जाता है। इसलिए स्कूल और कॉलेज में भी कला संगीत की कक्षाएं जरूरी मानी जाती है। कला और संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये हमारी रचनात्मक सोच को बढ़ाते हैं। जब हम नई धुन बनाते हैं, रंगों का चुनाव करते हैं या कोई नृत्य सीखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अलग तरह से काम करता है। इससे समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। दिमाग नए विचार सोचने के लिए प्रेरित होता है। यह गुण जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। पढ़ाई, नौकरी और आत्मविश्वास। कई बार जीवन में कठिन समय आता है,
जैसे परीक्षा का दबाव, परिवार की परेशानी या अचानक आने वाले बदलाव। ऐसे में

0: संगीत और कला एक भरोसेमंद साथी की तरह हमारा सहारा बनते हैं। दुख के समय मधुर संगीत मन को संभालता है। अकेलेपन में लिखना, पेंटिंग करना या गाना गाना मन को हल्का करता है। कला हमें अपने अंदर की भावनाओं को पहचानने में मदद करती है। इस तरह ये दोनों जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। जो लोग नियमित रूप से संगीत सुनते हैं या कला से जुड़े रहते हैं, उनमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। वे चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, समस्याओं को शांत मन से हल करते हैं, उनमें सहनशीलता और संवेदनशीलता अधिक होती है। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ मजबूत माना जाता है। संगीत का कला के छात्रों के लिए भी विशेष लाभ है। छात्र जीवन में तनाव, प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई का बोझ बहुत अधिक होता है, इसलिए संगीत और कला छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गाना गाने या पेंटिंग करने से दिमाग तरोताजा होता है। इससे पढ़ाई में दोबारा ध्यान लगाना आसान होता है। गतिविधियों में भाग लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। कई बार स्कूल में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग भी कराई जाती है, जिससे पढ़ाई भी रोचक हो जाती है। संगीत व कला से परिवार और समाज में सौहार्द बढ़ता है। यह केवल व्यक्ति को नहीं समाज को भी जोड़ता है। त्योहार में गीत संगीत का माहौल खुशी बढ़ाता है। कला प्रदर्शनी और संगीत कार्यक्रम से लोगों में सहयोग और समझ बढ़ती है। घर में बच्चे जब नृत्य या संगीत सीखते हैं तो वातावरण सकारात्मक और आनंदपूर्ण बनता है। एक खुशहाल माहौल सीधे सीधे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। अब हम जानते हैं कि कला और संगीत किस तरह से भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाते हैं। आज के समय में भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत आवश्यक है। इसका मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और सही तरीके से संभालना। संगीत सुनने या बजाते समय हम अपनी भावनाओं से गहराई से जुड़ जाते हैं। चित्रकला या नृत्य हमें गुस्सा, चिंता और दुख जैसी भावनाओं को एक सुरक्षित तरीके से व्यक्त करने का अवसर देते हैं। इससे व्यक्ति शांत, समझदार और संतुलित बनता है। एक भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में खुद को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। मानसिक थकान की अगर बात की जाए तो यह थकान दूर करने का प्राकृतिक उपाय है। दिन भर की पढ़ाई, काम या घर के कामों से दिमाग थक जाता है। कई लोग इस थकान को दूर करने के लिए मोबाइल या टीवी का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे दिमाग और ज्यादा थक जाता है। इसके मुकाबले हल्का संगीत, कोई वाद्य यंत्र बजाना, रंग भरना, नृत्य करना, ये सभी दिमाग को वास्तविक आराम देते हैं, क्योंकि कला और संगीत हमारी भावनाओं को शांत करके दिमाग को ताजा कर देते हैं। इससे नींद भी बेहतर आती है और मन स्थिर रहता है। कला और संगीत हमारे जीवन में आत्म अनुशासन व नियमितता को भी बढ़ाते हैं। कला व संगीत सीखते समय अभ्यास जरूरी होता है। जब कोई व्यक्ति रोजाना थोड़ा अभ्यास करता है तो उसमें अनुशासन व नियमितता की आदत विकसित होती है। रोज 20 से 30 मिनट गाने का अभ्यास या रोज थोड़ा समय स्केचिंग और ड्राइंग को देना चाहिए। कला व संगीत जीवन में उद्देश्य का एहसास दिलाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि वे किस काम में अच्छे हैं या उन्हें क्या करना पसंद है। कला व संगीत इस बात का जवाब ढूंढने में मदद करते हैं। किसी कला में कुशल होने से व्यक्ति को अपने जीवन में एक दिशा मिलती है, उसे अपने लक्ष्य और समझ आने लगते हैं। इससे जीवन में उद्देश्य और उत्साह बढ़ता है। जीवन में उद्देश्य होना मानसिक स्वास्थ्य को बहुत मजबूत बनाता है। काउंसलिंग सेंटर्स व पुनर्वास केंद्रों में म्यूजिक थेरेपी और आर्ट थेरेपी का उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर संगीत और कला हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी दवा से कम नहीं है। ये न सिर्फ तनाव घटाते हैं बल्कि मन को खुशी, शांति और संतुलन भी देते हैं। आज के तेजी से बदलते जीवन में हर व्यक्ति को चाहिए कि वो रोज समय थोड़ा संगीत सुने, किसी कला में बिताए। इससे हमारा मन शांत और मजबूत बनता है और हम जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी वार्ता और वार्ताकार थी प्रभा नगावत। ये आकाशवाणी पासवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।

किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बंदी फिल्म का नाम था। इंदिवर ने इसे लिखा, श्यामलाल मित्रा का संगीत।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

0: खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिस दे क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए।
1: ये सुदास हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का नाम था। रविन्द्र जैन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में धर्मवीर इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे दूसरा आदमी फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी में से लिखा राजेश रोशन का संगीत। इसके साथ ही प्रोग्राम हमें राही प्यार के यही संपन्न होता है। यह है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से।

0: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी

0: पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है। हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। ई20

0: 20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 6.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः की 8:15 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है कुछ दिल से कार्यक्रम।

सभी कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भर नमस्कार। श्रोताओं, एहसास इंसान की सबसे खूबसूरत पहचान है। पत्थर में जान नहीं होती क्योंकि उसे एहसास नहीं होता।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: श्रोताओं, एहसास मतलब दिल का बोलना। जब आंखें नम हो जाएं बिना वजह, जब किसी को देखकर दिल को सुकून मिले, जब किसी के दुख में अपना दिल बैठ जाए, यही एहसास है। ये न तोला जाता है न खरीदा जाता है, बस महसूस किया जाता है। माँ की लोरी में ममता का एहसास, दोस्त के कंधे पर हाथ रखने में हिम्मत का एहसास।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, पहली बारिश की बूंदें हाथ पर पड़ना, सालों बाद बचपन के दोस्त से मिलना, मेहनत के बाद सफलता मिलना, ये पल छोटे हैं पर दिल बड़ा कर देते हैं। श्रोताओं, अपना कोई दूर चला जाए, मेहनत बेकार जाए, कोई अपना समझ न पाए, दर्द का एहसास ही हमें इंसान बनाता है। जो दर्द महसूस करता है वही दूसरों का दर्द समझता है।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, ट्रेन में अनजान आदमी का पानी पूछ लेना, बीमारी में पड़ोसी का हाल पूछ लेना, खून के रिश्ते से बड़ा होता है एहसास का रिश्ता। श्रोताओं, हमारे पास 5,000 दोस्त फेसबुक पर हैं, पर बात करने वाला एक भी नहीं। बर्थडे पर 200 मैसेज आते हैं, पर घर आकर गले लगाने वाला कोई नहीं। श्रोताओं, हम इमोजी से हंसी दिखाते हैं, पर अंदर से खाली हैं। मोबाइल ने हमें कनेक्ट किया, पर डिस्कनेक्ट भी कर दिया। अब हम वीडियो देखते हैं, पर महसूस नहीं करते। श्रोताओं, हर कोई बोलना चाहता है, पर सुनना कोई नहीं। किसी का दुख सुन लेना भी एहसास है।

श्रोताओं, दुनिया में सबसे महंगी चीज एहसास है। बिल गेट्स अरबपति हैं, पर अपनी मां की गोद का एहसास नहीं खरीद सकते। रोबोट मंगल पर जा सकता है, पर मां की याद में रो नहीं सकता। इसीलिए इंसान बनकर रहो, मशीन नहीं। हंसो तो खुलकर हंसो, और रो तो दिल से रो, क्योंकि आखिर में लोग ये याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था।

पीछे पीछे सपनों के भागे तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सपनों से आगे कहां जिंदगी कैसी है बहेली हाय कभी तो हंसाए।

0: कभी तो हंसाए।
1: श्रोताओं, इसी गीत के साथ इजाजत दीजिए खुशबू जोशी को कार्यक्रम समाप्त करने की।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत शिल्पी माथुर के स्वर में।

0: एफएम बाणक 6.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत शिल्पी माथुर के स्वर में। प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।
1: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया। कहा, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा। आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स समूह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी सदस्य देशों के बीच अधिक एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान

0: सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब समय केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं बल्कि भारतीय उत्पादों और ब्रांडों को वैश्विक पहचान दिलाने का है। कल नई दिल्ली में वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारत की गुणवत्ता, नवाचार और क्षमता को दुनिया के हर बाजार तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है। श्री सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न राज्य और वस्त्र क्षेत्र के सभी हितधारक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले सालों में ये गति और तेज होगी। केंद्र, राज्य, जिले और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों से उत्पादन, निर्यात और मूल्य संवर्धन के नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे।
1: सिल्क बोर्ड 26,000 मैट्रिक टन पर 2014 में प्रोडक्शन साइज था, अभी 42,000 से ज्यादा है। आने वाले दिन में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए। फैब्रिकेटर से भी कहूंगा, एक लाइन तुम अपने ब्रांड का भले उस नाम से नहीं लेकिन दूसरे नाम से एक्सपोर्ट करना शुरू करें, जिससे इंडिया का ब्रांडिंग भी हो।
0: वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात को 37 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सम्मेलन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निःशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से इसका शुभारंभ करेंगे। पशुपालन विभाग ने बताया कि ये वायरस मक्खी, मच्छर और किलनियों के जरिए फैलता है। विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-2023 में इस बीमारी के कारण राज्य में लगभग 76,000 गौवंश प्रभावित हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 1,538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भांकलोटा में नए ट्रोमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जेडीए, नगर निगम, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यों को गति देने के लिए अत्याधुनिक सुपर सकर और मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व देने के लिए स्वामित्व कार्ड भी बांटे जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को भ्रामक और निराधार बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और सरकार इसकी लगातार निगरानी रख रही है। मंत्रालय ने कहा कि 20% एथेनॉल मिश्रण वाले E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिलाने या ईंधन टैंक के पास चीटियां जमा होने के वीडियो पूरी तरह से झूठे हैं। E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन का बीमा खत्म होने का दावा भी गलत पाया गया है। सरकार के अनुसार अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये व्यवस्था पहले से ही सफलतापूर्वक लागू है। इस कार्यक्रम से देश में कच्चे तेल की आयात में कमी आई है और 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई।

0: मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सीकर, झुंझुनू, करौली, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए किसानों के लिए विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। किसानों से खेतों और मंडियों में खुले में रखी पकी हुई फसलों और अनाज को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखने की अपील की गई है। रेलवे ने यात्री अनुशासन को मजबूत करने और यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। रेलवे बोर्ड आदेश के अनुसार 20 जून से देशभर में तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है। जयपुर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में खतरनाक और प्रतिबंधित सामान ले जाने के मामलों में भी सख्ती बढ़ाई गई है। पटाखे, गैस सिलेंडर या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में आरोपी को जेल भी भेजा जा सकता है। वहीं अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा किए जाने पर पूरी यात्रा का किराया और कम से कम 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। कॉलेज शिक्षा विभाग ने सहायक आचार्य बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम चरण के साक्षात्कार 2 और 3 जुलाई को होंगे। सहायक आचार्य इतिहास और पुस्तकालय अध्यक्ष के साक्षात्कार 6 से 17 जुलाई तक चलेंगे। सहायक आचार्य संस्कृत के लिए 6 से 16 जुलाई और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के अंतिम चरण के इंटरव्यू 6 से 10 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न सुपर स्पेशलिटी के लिए सहायक आचार्य के साक्षात्कार 10 जुलाई को होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निःशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया। कहा, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा। आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 61.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, प्रातः के 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे अलका याग्निक और हरिहरन के स्वर में कुछ गजलें।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, भी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज में कुछ गजलें। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफो

उदीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओ, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां स्थित हैं। श्रोताओ, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओ, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओ, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओ, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
आप हमें हमारे IVRS नंबर

0: पर 8804045559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का यह सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्सकपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपने कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्म जग तीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा

0: मुझे ये देखकर आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुँचे और वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेन्द्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
5: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के

0: बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
1: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
1: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
1: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
1: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
1: जी,
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक।

0: और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: FM बैंड 6.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार, वो कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क
1: सब सखियों का पिया प्यारा सब में है और सब सुनारा
0: और फिल्म थप्पड़
2: एक टुकड़ा हो चुका अंदर अंदर
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
3: बेखबर दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं।

0: शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी, और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
0: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
1: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
0: जी,
1: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
0: जी।
1: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
0: ओहो,
1: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली, और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने, तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेतीबाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
0: जी।
1: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
0: जी,
1: ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए, और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
0: जी, जी।
1: ये 1984 का जमाना था।
0: कितने बड़े थे आप?
1: मैं 71 में पैदा हुआ।
0: ओ, तब तो बहुत छोटा।
1: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था, 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे, तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूं, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
0: काम क्या कर रहे थे?
1: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
0: अच्छा।
1: जो पान में सुपारी खाई जाती
0: जी, जी, जी।
1: है, वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
0: जी, जी।
1: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ, तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, और आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में
0: जी, जी, जी।
1: या उसको समझने में या उसके महसूस करने में।
0: हाँ।
1: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
0: रेडियो का स्विच ऑन कर,
1: हाँ, कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे काटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
0: बज रही थी,
1: और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं,
0: क्या बात,
1: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था, और इस गजल के साथ

0: साथ मेरी गजल शुरू हो गई और सेम मीटर में है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है। उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मकता कहते हैं,
1: शुरू हो गई मतलब आप कहने लगे।
0: हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने,
0: मेरे अंदर का शायर जो है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम।
0: हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई होती थी उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, खत्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है जो चलता रहता है।
1: तो वो गजल याद है?
0: गजल तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना।
1: क्या बात है।
0: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की। तो मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की?
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है। शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाए, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं, जैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ, वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है।
1: क्या बात है।
0: अगर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह, तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना जरूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है जख्म भरते ही
0: जी।
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है
0: जी जी।
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसेटिव प्राणी है
0: जी।
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई, तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और ममानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता,
0: बिल्कुल सही बात,
1: जितना अधिकार आपका आपके बाप के यहाँ।
0: बिल्कुल।
1: तो जब आप सेंसिटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहां पले, लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस था,
0: चल रही थी,
1: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था
0: जी।
1: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे थे, और एक दिन वो फट गया और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ
0: जी।
1: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा
0: जी,
1: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं, लड़की
0: जी जी जी,
1: ठीक है। तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का
0: जी,
1: उसके बगैर मुमकिन नहीं है
0: उस...
1: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना, वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो है चीजों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
0: महसूस करते हैं, वो जो खरोचे होती है वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो।
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
0: क्या बात है,
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर,
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर,

0: दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
1: वाह वाह वाह।
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है।
1: जी,
0: हम उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में,
1: हाँ,
0: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको।
1: हाँ,
0: नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है,
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई बार।
0: तो दर्द हीरा है, दर्द मोती है।
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपने मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियां होती है, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियां, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है यार।
1: बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी।
0: मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है।
0: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एक आध वाकया जरूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस जमाने में टीबी लाइलाज था।
1: जी जी।
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बजाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे जिंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत।
1: जी जी।
0: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से।
1: हाँ।
0: एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था।
1: हाँ।
0: जैसे मैं गणित में कमजोर था।
1: हाँ।
0: और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, हाँ, दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था।
1: हाँ।
0: उसमें कमजोर था।
1: हाँ।
0: बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
1: तेज थे,
0: बहुत तेज था मैं। हाँ।
1: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
0: हाँ, सूरत में।
1: जी, सूरत में। तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
0: वो शायरों में तब मैं आया नहीं था, और मैं सूरत में ही रहता था।
1: जी।
0: और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की।
1: जी, शीन काफ निजाम भी आया था इसमें।
0: शीन काफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, उसका संचालन किया था।
1: जी।
0: अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है।
1: कुंडली आपकी पता है। लेकिन अभी श्रोताओं तक पहुंचाना है।
0: उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली
1: जी,
0: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीन काफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे।
1: जी, सब जी।
0: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे मुल्क में। संदेशे आते हैं, है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही जमाना था। और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे, और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब।

0: तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
1: जी जी, जी।
0: तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं बड़े शायर हैं फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी उनको पढ़ाना शुरू किया शीनकाफ निजाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे।
1: जी, जी, जी।
0: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि होटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है सामईन जो है वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
1: और उसमें जावेद प्रूव करने का जरूर था।
0: जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीनकाफ निजाम साहब से शायद पहले मिला हूंगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, क्योंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी। दीवारों के बीच वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ।
1: क्या बात है
0: ना,
1: काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था।
1: जी, जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: ओहो, क्या बात है।
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी
0: है। अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी, जी।
0: है ना, और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी। हाँ, क्योंकि

0: वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए।
1: क्या बात है।
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह।
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना। हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करता,
0: नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली
1: जी जी।
0: अब वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं।
1: क्या बात है।
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया उसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमीन पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी जी,
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जाने दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा। ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला। और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला।
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
0: इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतूत का जमाना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ मैं
1: जी।
0: सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने
1: जी। तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे, विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी।
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो।
0: जी।
1: तो सेवी अली नाम है उनका, उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी।
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी।
0: अच्छा,
1: कभी
0: ये बात तो नहीं बताते,
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नावेल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था।
0: जी।
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती है या कलकत्ता में रहती है, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब

0: के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
1: बिल्कुल।
0: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी अस्सी तक,
1: भीड़
0: और अस्सी तक आया है,
1: आर्टिकल
0: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं, लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या दस का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी
1: जी।
0: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खासतौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे। अनुभव सिन्हा साहब वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
1: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी। अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
1: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
0: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
1: देर आए दुरुस्त आए।
0: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया। उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने वाले हैं। तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ। वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहां जाता हूँ अकेला और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी,
0: है।
1: जी,
0: बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ है।
0: हाँ। तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी, जी, जी,
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना। रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है। तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए। उसका म्यूजिक, मतलब उसने बहुत पैसे कमाए।

0: फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम
0: जिद,
1: जिद फिल्म,
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने
1: जी।
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद जो जगदीश सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ तेरी फरियाद हो गया है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकू तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागू तुझमें, तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकू तुझमें। तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया, वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी।

0: तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है?
1: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
0: तो देखा भारद्वाज भी थे उसपे।
1: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल हाँ। सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ। बोले नहीं, मुझे तो वही चाहिए।
0: क्या बात।
1: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
0: क्या बात है।
1: हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
0: क्या बात है।
1: मुझे सिचुएशन बताई। पहली जो फिल्म थी तुम्बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बजाहिर मर गया है
0: जी,
1: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है। इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बजाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहां इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
0: क्या बात है। अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
0: वाह वाह।
1: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे,
0: मतलब
1: अभी भी जैसे तू है, है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे, और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है, और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
0: जी जी।
1: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
0: जी जी।
1: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर।
0: वाह।
1: ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
0: क्या बात है।
1: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
0: जी।
1: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
0: क्या बात।
1: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
0: जी।
1: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। रात कुछ ऐसे कटी है,
0: रात कुछ ऐसे कटी है
1: कि सहर ही ना हुई।
0: क्या बात है। वाह।
1: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
0: वाह क्या बात है।
1: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया सुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे कैलाश खैर की आवाज में कुछ गैर फिल्मी गीत।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कैलाश खैर की आवाज में कुछ गैर फिल्मी गीत।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना कैलाश खैर के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत। दिन के 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं फिल्म आंधी से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की स्वर में। शब्द रचना है गुलजार की और संगीतकार हैं आरडी बर्मन।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म आरजू से। बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अखियों के झरोखों से फिल्म से हेमलता की आवाज में गीत। गीत संगीत है रविंद्र जैन का।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में फिल्म अमर प्रेम से ये गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश अनुरोध फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर

0: लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे गीत बाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और संगीतकार है सचिन देव वर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
0: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन ने इसे संगीत दिया है।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म सीआईडी का यह गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

मेरा नाम चिंग चिंग चू।

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत जो कि है 12 o'clock फिल्म से। गीता दत्त की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत है।

हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से गीता दत्त की आवाज में जानिसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने और कनु रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे साहेब बीबी और गुलाम फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत कागज के फूल फिल्म से गीता दत्त की आवाज में कैफी आजमी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर, एक सफर जहां हम अपनी यादों को भी याद करते हैं और बड़े प्यारे से गीतों और जज्बातों के साथ बात करते हैं। आज सुरीला सफर की इबारत कुछ अलग तरीके से हम लिखकर लाए हैं और उस इबारत पर आप सभी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अब हम चलते हैं उस इबारत की ओर जो हमने आपको सौंपी थी। इबारत कुछ ऐसी है कि फिल्में बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, मगर कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो समय नहीं इतिहास बन जाते हैं। और जब बात फैशन की हो तो हिंदी सिनेमा का जिक्र भला कैसे ना हो। दशकों से हमारी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वे ट्रेंड भी गढ़ती हैं, सपने भी बुनती हैं और अलमारियों का रंग रूप भी तय करती हैं। कभी अनारकली की अनारकली कुर्तियां दिलों पर राज करती हैं, तो वक्त का हेयर कट युवाओं के आईने का सपना बन जाता है। ब्रह्मचारी की सादगी भरी साड़ी हो या बॉबी का चंचल पोल्का डॉट्स, हर दौर ने अपने हिस्से का एक फैशन इतिहास लिखा है। कुर्बानी के जंपसूट ने आत्मविश्वास को नया रूप दिया, तो चांदनी के शिफॉन की साड़ियों ने हवाओं को भी रुमानी बना दिया। रंगीला का रंग हो या तेरे नाम के राधे का अंदाज, हर गली में उनकी झलक दिखाई देती थी। देवर की भाभी की बहन की बैंगनी साड़ी से लेकर जफी महट के बेफिक्र और सुकून भरे कपड़ों तक, फिल्मों ने हमारे वार्डरोब ही नहीं हमारी सोच को भी सजाया है। और फिर ये जवानी है दीवानी की साड़ियां जो आज भी अनगिनत अलमारियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, वहीं डोला रे डोला की भव्य साड़ी, वह तो मानो हर फैशन प्रेमी के सपनों की अलमारी में टंगी हुई एक अधूरी ख्वाहिश है। तो आइए यादों की इस रैंप वॉक में आप भी शामिल हो जाइए। बताइए कौन सा फिल्मी फैशन को अपनाया था आपने, कौन सा अंदाज आज भी आपके दिल के किसी भी कोने में सजा हुआ है। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आप बहुत देर से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे इस बात की ख्वाहिश है। पर हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे श्रोता लिखते हैं, आज तो फैशन का जलवा ही है, शुरुआत से लेकर आज तक फैशन हर 20 साल बाद पलट कर आती है। तो हर चीज जो पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी आज वो ही चलन में है। बड़े प्रिंट वाले कपड़े, साड़ियां, बालों की भी वही फैशन,

पर एक बात है, साड़ी नहीं बदलती, वो विभिन्नता लेकर आती है, पर कुछ साड़ियां राज्यानुसार वो की वो ही रहती हैं। जैसे महाराष्ट्र की पैठणी, नवारी, बंगाल की बंगाली, तमिल की कांजीवरम, गुजरात की बांधनी और सभी परंपरागत रूप से बनकर आई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कहती है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ में मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं, उसी तरह फैशन के युग बदलते हैं, जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, साथ साथ इंसान के दिमाग और पहनावे में भी बदलाव आता जाता है। जी, हमारे एक श्रोता ने जानकारी दी है कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी, जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई और वर्ष 1931 में बनी आलमारा देश की पहली बोलती फिल्म थी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। वो कह रहे हैं कि फिल्मी फैशन को अपनाने की बात करें तो वो कहना चाहते हैं, माँ तो माँ होती है। बचपन में हम खार मुंबई में रहते थे, पूज्य माता जी जब भी लिंकिंग रोड के हेयर ड्रेसर के पास ले जाती थी तो कहती थी, बेटे के हेयर कट शशि कपूर जी के स्टाइल में कानों तक बड़े ही रखो। परंतु विवाह के बाद यानी शादी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने डंडा दिखाकर उनका हेयर कट स्टाइल बॉर्डर फिल्म देखकर छोटे फौजी जैसे कटवा दी है और कहती है कि अब ज्यादा स्मार्ट लगने लगे हो। ये फैशन है जो बदलता रहता है। देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फैशन के कपड़े सब हमारे सिनेमा जगत की देन है। ब्रह्मचारी की मुमताज की साड़ी, देवदास की माधुरी, ऐश्वर्या की ड्रेस, माधुरी के नए स्टाइल, दीदी तेरा देवर दीवाना, अनगिनत ड्रेस श्रृंखला है। और इन सब में वो कहते हैं कि राजेश खन्ना का स्टाइल नहीं भुला सकते। काफी श्रोताओं ने बता दिए तो गाने वो बता नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमारे श्रोताओं में बहुत सारे श्रोताओं ने एक बात जरूर कही है कि आज तो बातें महिलाओं की होंगी, हम पुरुष इसमें क्या करेंगे। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम महिलाओं का फैशन, अगर महिलाएं फैशन करती भी हैं तो आप पुरुषों के लिए ही तो करती हैं, सच समझ कर एक दूसरे के सामने ही तो जाते हैं। तो ये फैशन जो है जो बदलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैशन केवल महिलाओं का बदला है। फैशन इंडस्ट्री में फैशन जो है फिल्मों के साथ बदला पुरुषों के लिए भी है, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कल शायद कोई एक तरह का पैंट जो पुरुष पहना करते थे आज महिलाएं पहनकर घूम रही हैं। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं फैशन के, हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है तो जरूर हमसे साझा कीजिएगा। और चलिए चलते हैं पहले गीत की तरफ। और पहले गीत में मेरा तो यही प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्टाइल है, फैशन स्टाइल जो आपने देखा था, मन में था कि ये पहनना है, लेकिन किसी न किसी कारण से आज तक नहीं पहन पाए। हो सकता है वो पुरुषों का हो सकता है वो महिलाओं का हो। आप अपनी बात रखिए कि कोई एक स्टाइल होगी जो मन ने कहा था पहन लो, या मन ने कहा था ऐसे बाल कटा लो, या मन ने कहा था ये वाली अंगूठी, ये वाली चैन, या कुछ तो होगा जो मन में होगा, उस मन की बात को हमसे कह दीजिए और सुनिए ये वाला नगमा।

हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत जिसे हमने लिया मुगले आजम फिल्म से, और हमारे श्रोता ने सही कहा कि इसमें मधुबाला ने अनारकली सूट पहना हुआ है। लता मंगेशकर की आवाज और साथियों की आवाज में सुन रहे थे इस गीत को, शकील बदायूं ने लिखा और नौशाद ने संगीत से सजाया। हम जो ये गीत सुन रहे थे, इस गीत में यानी इस फिल्म में मुगले आजम फिल्म की पोशाकें मक्खनलाल एंड कंपनी के द्वारा डिजाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल, रेशम, ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले जो होता था कि कोई कंपनी वाले फिल्मों को डिजाइन करते थे, फिल्मों के कपड़ों को डिजाइन करते थे। अभी ड्रेस डिजाइनर का जो चलन था वो आया नहीं था फिल्मों में। कब आया था थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब चलते हैं हमारे श्रोताओं के मजेदार बातों की तरफ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे ये तुमसे, तंग पैंट पतली टांगें लगती हैं सिगरेट जैसे। उसके साथ ही लिखते हैं भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला, हीरे का छल्ला पहना बहुत दिन पहले बॉटम आज साड़ी पहन शर्माई, बड़ी खूबसूरत सी बात हो लिख रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि हालांकि हमारे पुरुष श्रोताओं ने कहा कि इसमें हम क्या कमेंट करें, पर हमारे एक श्रोता ने बड़ी संजीदगी से बड़ा प्यारा कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में बिना ब्लाउज और पेटीकोट की साड़ी शरीर पर लपेटी जाती थी। हाँ, ये नौ गजी साड़ी होती थी जिसे पूरे शरीर पर लपेटा जाता था, उसी से एक ब्लाउज नुमा एक तैयार कर लिया जाता था और वही पेटीकोट बन जाता था, वही साड़ी होती थी, एक ही साड़ी होती थी, एक ही कपड़ा होता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश काल में ब्लाउज पेटीकोट का प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं प्री ड्रेप्ड साड़ी, कैप स्टाइल, रफेल और जैकेट स्टाइल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा साड़ी को बेल्ट के साथ पहनना भी एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, फैशन बदलता जा रहा है पर कपड़े तो लगभग वही हैं। तो इसके साथ साथ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में महिलाओं के फैशन का नाम आते ही सबसे पहले उन्हें याद आती है साधना। अच्छा, माथे पर हल्की जुल्फें, फैशन कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातें इसमें लिखते हैं। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि फैशन का क्या कहना, हमारे हर जमाने में फिल्मी सितारों का फैशन देखते हुए अपनाया गया। मेरी मम्मी को नरगिस जैसी साड़ियां पहनने का शौक था और उन्हें, यानी वो लिखती हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी की साड़ी का स्टाइल पसंद है और आज भी उसी स्टाइल में साड़ी पहनती हूँ। क्या बात, बढ़िया बात है, ऐसी फैशन ही तो हमें बनाता है, जोड़ता है किसी के साथ में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा बदली है वो फैशन है। आज स्कर्ट का कुर्ता तो कल स्कर्ट का, सही बात है, फैशन के पीछे पागल होते रहते, लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं कि फैशन चाहे जितना बदले मगर मेरा तो मानना है कि फैशन कितना भी बदले आप वही पहने जो आप पर फवे भी। और दूसरी बात ये भी होती है, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, कैरी करना यानी संभाल पाना। हम जिस वस्तु को अच्छे से संभाल सके वो पहने तो कितना अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने जो फैशन अपनाया वह अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर अपनाया, उनके बालों का हेयर स्टाइल आधे कान ढके हुए और इस टाइप की कटिंग और पैंट में जो बेल

बॉटम टाइप का था, उसके नीचे काफी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज्यादा बड़ी होती थी जी। वो फैशन बहुत चला और बहुत लोगों ने उसे अपनाया, और हमने आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा कि आपको ऐसा कौन सा है स्टाइल जो पसंद आया था पहन नहीं पाए, तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छा एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अनारकली अब फैशन में आई है नए कलर में, स्त्री वर्ग पहनती नहीं है, अब आम वर्ग में फैशन में इसे ज्यादा अपनाया है, ज्यादा मोटी स्त्री अपना पेट छुपा सकती है। नहीं देखिए क्या है, ये जो चीजें हैं जैसे अनारकली है वो बड़ा अगर उसे हमारे कॉटन के कपड़ों में सूती कपड़ों में बना लिया जाए तो कितना अच्छा होता है ना, पहनने में कितना सुकून मिलता है। इसके साथ हमारे श्रोता बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं फैशन के बारे में, और मुमताज जी दुपट्टा बालों में लगाती थी, वो उन्हें बहुत पसंद है, और पर ना बाल तब वैसे थे ना कॉपी करना आया, सो मन की बात मन में रह गई। मुमताज की अदायगी को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और ये अगला गीत है उसी हेयर स्टाइल को लेकर जो हेयर स्टाइल तब से लेकर आज तक फैशन में है। एक टाइम था जब ये आई थी और आज का वक्त है जब ये है, और इस स्टाइल को केवल इसलिए बनाया था क्योंकि माथा चौड़ा था अभिनेत्री का और माथा छुपाना था। चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम बता दीजिए।

हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत, और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से बचपन तक फैशनेबल हूं, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के जमाने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती, HMT टाइटन की घड़ी के साथ। अब बालों का बताएं रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है, तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे, बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से बात याद आई 1983 में जितेंद्र श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखाकर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्डरोब भरा रहता है और शिफॉन सिल्क की साड़ियां, बनारसी कॉटन, क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती है जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारे एक श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली ही वीना रॉय ने पहनी है। और रंगोली चित्रहार में उस गाने को देखती है तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है, क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे, महिलाएं आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी, बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी वह उनके साथ गई, साधना और अनीता का पहना हुआ गागरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए, तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई, तब उन्हें डिजाइन ने एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए, और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी उसी को देखकर बनाया। बहुत बढ़िया बात है, ये भी अपने आप में प्यार है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी और साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि भानु अथैया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म CID से उन्होंने शुरुआत की थी और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में, और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिजाइन किए थे। तो ये भानु अथैया जो थी इन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था, यानी इस साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं। अब आपसे मेरे पास से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस उस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, आप फटाक से पहचान जाएंगे। और दूसरा प्रश्न

में ये है कि एक पल के लिए आंख बंद कीजिए। आंख बंद कर ली, अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, जरा उसका नाम लिख दीजिए। ये बात पुरुष और महिलाओं दोनों श्रोताओं पर लागू होती है। कौन सी हीरोइन आपको दिखी जिस जो आपको बहुत पसंद है, जरा उसका नाम हमें लिख भेजिए। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस फिल्म का नाम।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आंख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बंद आंख से मैसेज कैसे लिखें, आंख खोलने के लिए तो कही, हाँ हाँ आप आंख खोल सकते हैं और आंख खोलकर संदेश भेज सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को, किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नजरों में कृति सेनन भी है, कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें प्रेरित कर रही है आंख बंद करने पर, किसी को मधुबाला दिखाई देती है, तो ब्रह्मचारी में मुमताज की साड़ी किसी को याद आ रही है, किसी को हरे रंग के दुपट्टे याद आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नया बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है जो याद आ रहा है। देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं, जैकी श्रॉफ को उन धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहां कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहनाकर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझकर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन कराकर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े, बोली, सब बचकुछ बदला हुआ दिखाई देता है, फैशन बदलता है, लोगों की संस्कृति, आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारी एक श्रोता ने पूछा, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विक पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो बिग पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहां भी घूमने गए वहां पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं। हुआ होगा ना, ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो खिंचाई थी, भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहां की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम, तुम, तुम, तुम।

0: दर्शकों, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा, मैं कहती हूँ।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ, और आप सबने सही पहचाना, आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर, इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं, लुक्स हैं, उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिजाइन और स्टाइल किया था, पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी, जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी, सत्यवान और बी आर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में, और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं। और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपए के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहां जाकर फोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहां के कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूलकर आ गई, जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही है। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते बहू जापान गई थी तो वहां की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को उन्हें। एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सैल्यूट करने लग जाते हैं, क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती है बॉबी फिल्म का याना, इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी, नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और बड़े फोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी मैं भी बहुत फैशनेबल रहे हैं, वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, शायद आती होगी इस बात से ऐसा हम मानकर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है, और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज अब फिर से आ गए हैं। हाँ कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं, और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं, जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीजें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी

दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है। और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं? सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा किसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखती हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियां पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जब ही मैट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है, जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी, काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियां, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था। जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूंगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कम्फर्टेबल लगता है। जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद है, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहां बहुत सारी फोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिजाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिजाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे, क्योंकि वो डिजाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है। और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियां थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियां। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन है, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है जी। हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिजाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए, तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियां हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

आज की त्रिवेणी में पड़ोसियों की चर्चा। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने कामकाज और नौकरियों के कारण प्रायः एकल परिवारों में रहते हैं। यहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चों का परिवार होता है। सगे संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है तो जीवन की मुसीबतें बहुत आसान हो जाती हैं।

0: उद्योग पढ़ाई लिखाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अथवा दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पड़ोस में बहुत सजग रहना चाहिए। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ केवल अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए पड़ोस में बहुत से आकर्षण मौजूद होते हैं।
1: अरे है।

0: क्या है।
1: ऐसा नहीं है कि पड़ोसी केवल मुसीबत में ही काम आते हैं, वे हमारे किसी पार्टी या शादी समारोह में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार दोनों की छतों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी छत का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +99932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: चार महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गोल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों

0: से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमेरिका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती

0: एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थे। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदा

बहार नगमे में आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: बाहर गानों की महफिल
1: जाने करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा बहार नगर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सदा सुखी रहिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का
2: नमस्कार।
1: क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूं आपके सामने।
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं, तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी।
1: हाँ?
2: कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे हैं,
1: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपने टिफिन।
2: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
2: या फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में मुरब्बा, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है ना, उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती है।
1: शान होते, तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुके होंगे
2: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
2: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
1: संयम
2: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
1: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहां कहां संयम खो दिया था
2: या फिर झुंझला उठे।
1: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
2: संयम टूट गया।
1: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
2: फंस गए हो और सामने वाली आपको

0: तो पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
1: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती है उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें, संयम क्या है। हाँ, संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
0: और कब कब खो दिया संयम,
1: वो तो बताना ही क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी
0: दोनों भी है
1: ना।
0: जी, और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
1: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
0: बहुत नरम मुलायम, बहुत सुंदर।
1: तो सोनाली, इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
0: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इसकी इलकल साड़ी के,
1: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
0: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं, उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही है।
1: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहाँ थोप देते हैं और अनावश्यक। कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
0: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
1: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद,
0: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखे, हाँ कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
0: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
1: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
0: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती
1: हैं। हाँ, वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर
1: खरीदनी पड़ेगी, है
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है और पारंपरिक रूप से इसमें टोपी देनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं और कई साड़ियों में

0: मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
1: और एक इल्कल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और इल्कल साड़ी जो है कर्नाटक की पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है। और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
1: और आज इल्कल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
1: घर चल सके,
0: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इल्कल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा अभी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहां की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है। और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
1: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए तो आपको इल्कल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियाँ तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है। कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियाँ जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का सिर्फ कि वक्त बहुत
0: ज्यादा लगता है,
1: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी एक दो घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहने जा।
0: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं। कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
1: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ, यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है उतना ही समय में साड़ियां भी पहन,
0: उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ
1: उसकी बात कुछ और होती है ना।
0: चलिए तो गीत सुन ले,
1: सुनते हैं गीत।

0: हाँ, तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने, और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है।
0: एक पन दो का है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में आपने कहा अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है, वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद कर देते हैं।
0: बर्बाद कर देते हैं, और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है।

0: जाती
1: बहुत
0: है,
1: बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिखकर ही रहूंगा, रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और ये ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत। ये बहुत गलत आदत है, आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए।
1: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम ले।
0: हाँ, वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है। हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगता है।
1: तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी उसे आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए। समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग। और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
1: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली, कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, उसका सदुपयोग करना,
1: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा है, नहीं जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना, मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है। मसलन हास्य व्यंग के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान

0: और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है। ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि के तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें। और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनके पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहां बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहां सोच समझ कर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में, विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में, अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
0: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे तब खुद को रोक लेना ही

0: संयम है, संयम हार नहीं ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
0: है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं कई कठिनाइयां कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
0: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए या एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज नहीं
1: साल नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी,
0: जिंदगी
1: और इतना सुंदर जीवन है मिला
0: उसको
1: है,
0: हम खत्म कर देते
1: जी। तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते, उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो बचपन से ही उन्हें इस
0: ये संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना कि आप अपने जीवन को ही समाप्त कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का
1: कि गाना
0: सुनाना चाहिए।
1: सुना

0: मंदाकिनी जी,
1: जी
0: हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी 1/2 छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर 1 छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और 1/2 कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बर्नी में रखे। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ
1: खा सकती है। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है,
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी,
2: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम,

0: राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है, आम को तैयार करना है। कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छील कर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
1: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
0: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
1: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4-5 कप पानी है, 4-5 इलायची है। फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
0: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और उसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखाकर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
1: और अब क्या करना है?
0: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
1: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, विविध

0: भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में, आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
1: जी। नमस्कार,
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और खास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
0: संगीत सरिता
1: अभी भी आता है। उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी जी। और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे मेरे ख्याल से, पहले स्वर्ण पदक विजेता। तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइनेंस कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइनेंस कॉलेज है, वहां एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहां हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे। और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहां ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्पररी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
0: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ
1: जी। हाँ।
0: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 वर्ष की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को?
1: जी जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शुरू किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था, जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे, उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसे और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
0: क्या बात है।
1: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यही रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
0: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
1: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे

0: से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले
1: जी जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनीचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनीचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनीचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनीचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारी का जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारी का वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी। तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्सेक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली। और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है। तो बढ़िया।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते
0: हैं? मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में, फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो है आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना

0: करना चाहिए देखने वाले को, या उसको, मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी।
0: है।
1: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे?
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: ओ शाम कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ।

0: जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहां पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहां से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उनके गांव जाना, उनके गांव में जाकर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहां से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
1: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हो और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
0: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था और वो इतना ज्यादा चमकीला और इतना ज्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार, आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हर ही रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे

0: उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीजें नजर आने लगती हैं, कई रूप भी नजर आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नजर आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है। किसी चित्र को समझने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
1: मौसम फिल्म का गाना है।
0: जी हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बैंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बैंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बैंगलोर चला गया था और वहां से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहां के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमंच शो था बम्बई में और जहांगीर राज गैलरी में, और ओपनिंग में चश हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चर्चा हबीज आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात करी, तो काफी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियां सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने, और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वनमैन शो हुआ था प्राग में, और वहां पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वनमैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए, और वो उन्होंने 80 चित्र जो है अपने घर के कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956

0: 56 के पहले के थे
1: जी जी
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैंप नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस चरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं। तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है। अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भीतर तो सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी है, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर है वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला, और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है, ही वॉज अ ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है, तो उनकी भी

0: जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
1: जी जी।
0: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते उनको कई चीजों से वंचित रहना पड़ता था। मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए
1: जी,
0: कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
1: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर।
0: हाँ।
1: तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
0: ये जो मेरी किताबें हैं इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है
1: जी जी।
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
1: जी।
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे
1: जी।
0: तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो
1: जी जी। तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है,
1: कभी
0: मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ, मेरे जो पर्सनल संबंध थे इतने साल, 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहां पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहां कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 हु डिक्लाइन ट्रिनाले, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था
1: जी जी।
0: तो सबसे पीछे ही था, तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, मगर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना मूर्ति सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है, उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है वो।
0: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में, एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और

अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं है। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत जरूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भी हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए।

0: उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
1: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
0: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
1: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
0: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से जो अपने रंगों से वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं।
1: जी।
0: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भई हमें बहुत जागरूक करके एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपने तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहां भी पसंद किया गया और जब फ्रांस में हुआ तो वहां भी पसंद किया गया और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
1: जी जी जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो वो शायद रंग ही है जो मनुष्य को संबोधित है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो, मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
1: जी, जी।
0: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा।
1: जी, सुनते
0: ये
1: हैं।
0: ये वाला सुनता
2: है।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीजें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें उसे?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीजें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाए तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा बताइए।
1: ये बहुत

0: जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख करके भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रजा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
1: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
0: इसमें दोनों तरह की चीज होती है। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है। आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते
1: और वापस उस चित्र में उस यात्रा में वापस लौटना भी मुश्किल होता है
0: वो।
1: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माँ ही चैनल है। FM बैंड 101.3 MHz की आवृत्ति पर शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे आज की सभा की शेष और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। तो आइए आपको लिए चलते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विवरण की ओर। युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 5:05 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम 5:30 पर और रात्रि के ठीक 9:00। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे और किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल शाम के ठीक 7:00।

शाम के 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम समाचार संध्या। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 8:45 पर। फिल्म संगीत आपको सुनवाया जाएगा रात्रि के 10 बजे और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आइए आपको ले चलते हैं कल की प्रातकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण की ओर। प्रातः के 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। रामचरितमानस गान आपको सुनवाया जाएगा प्रातः के 6:30 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे खेतीनी बात। आदिवासी लोक संगीत आप सुन पाएंगे 6:50 पर। और 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन।

जहां तक 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात कार्यक्रम कुछ दिल से की प्रस्तुति आप सुन पाएंगे 8:15 पर। 8:45 का समय रहेगा राजस्थानी लोक संगीत का और 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

सुगम संगीत आपको सुनवाया जाएगा प्रातः के 9:10 पर और 11:00। 9:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर और 12:00 से आप सुनेंगे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए। अब युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युववाणी सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं को आपकी दोस्त अर्पिता जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की दौड़ती भागती जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो दिन भर काम करता है, अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपने स्वास्थ्य तक का ख्याल नहीं आता। इसीलिए दोस्तों, कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना, अपने लिए निकालना जरूरी है। इसके लिए योग को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। इससे आपको शारीरिक मजबूती और मानसिक शांति मिलती है। यह योग एक स्वस्थ जीवन शैली का

मूल आधार माना गया है और स्वस्थ रहने के लिए योग करना, व्यायाम करना जरूरी है। दोस्तों, योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमें स्वस्थ और तरोताजा रखता है। नियमित योग से न केवल हमारा शरीर लचीला और निरोगी बनता है, बल्कि साथ ही मानसिक शांति और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, युवाओं में मानसिक शांति और तनाव से दूर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज का युवा अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह बहुत सी बार डिप्रेशन में आ जाता है या काम से तनाव उसे हो जाता है। दोस्तों, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक स्वस्थ शरीर और शांत मन की कुंजी है। यह केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, बल्कि तनाव को कम करने, ऊर्जा बढ़ाने और जीवन में संतुलन लाने का एक माध्यम है। इसीलिए प्रत्येक युवा को नियमित रूप से योग करने का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, योग सुबह उठने के बाद कुछ समय या रात को सोने से पहले भी किया जा सकता है, और जरूरी नहीं कि रोजाना 1-2 घंटे योग किया जाए। इसके बजाय आप कुछ समय से शुरुआत कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे अपने समय को बढ़ा सकते हैं। जब भी आपको तनाव महसूस हो या काम से आपको जरूरत लगती है कि हमें काम से ब्रेक लेना चाहिए, तो 5 मिनट गहरी सांस लें। इससे मन भी शांत रहता है और ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। दोस्तों, घर पर ही आप सुबह जल्दी उठकर आसन, योगासन जैसे ताड़ासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कई आसन का अभ्यास कर सकते हैं। योग का एक और सिद्धांत है कि भोजन के प्रति भी आपकी सजगता हो। जब भी आप खाना खाएं, उस खाने को आनंद से खाएं, धीरे धीरे चबाएं, जिससे आपका पाचन भी बेहतर होता है। इसलिए दोस्तों, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रतिवर्ष 21 जून जो अभी 2-3 दिन पहले ही गया है, उस दिन योग दिवस मनाया जाता है। और इस दिन हमें स्वस्थ रहने और फिट रहने के लिए ही प्रेरणा दी जाती है। योग भारत की प्राचीन धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया अपनाकर लाभ उठा रही है। योग केवल व्यायाम ही नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और अनुशासित जीवन जीने की एक कला है। दोस्तों, योग में मौन को भी शामिल किया गया है। दिन में कुछ मिनट शांत बैठकर खुद को समय दे, यह आत्म जागरूकता बढ़ाता है और आपको बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करता है। क्योंकि दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा अक्सर परीक्षा के, अपने काम के और सोशल मीडिया के दबाव के कारण तनाव में रहते हैं। इसीलिए डिजिटल दुनिया के दबाव से घिरे हुए वर्ग के लिए यह योग बेहद जरूरी है। योग और गहरी सांस, जिसे प्राणायाम भी कहा जाता है, यह नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर तनाव को कम करता है। इसीलिए प्रत्येक युवा को अपनी नियमित दिनचर्या में योग का जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, सफल होना है तो स्वस्थ रहो भाया। और दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और संदेश।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
4: दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस, प्रतिवर्ष आज ही के दिन 24 जून को मनाया जाने वाला यह दिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिवस विश्व भर में कूटनीतिक भूमिका में कार्यरत महिलाओं के योगदान को सम्मानित करता है। दोस्तों, बात करें कूटनीति की, तो कूट

नीति का अर्थ है बुद्धिमानी, समझदारी और बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की नीति, जिसमें ना कोई विवाद हो और ना ही कोई झगड़ा हो। इस नीति को कूटनीति कहा गया है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, शांति निर्माण एवं वैश्विक शासन को प्रभावित करने में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को स्वीकार करना है और इसे आगे बढ़ाना है। लैंगिक समानता में प्रगति के बावजूद कूटनीति परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र बनी हुई है। यह दिन हमें कूटनीति के हर स्तर पर निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता की याद दिलाता है। दोस्तों, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है शांति, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग में महिलाओं के योगदान को पहचान देना, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, युवा महिलाओं को कूटनीति के क्षेत्र में करियर बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, कूटनीति में महिलाओं की समान भागीदारी से बेहतर और अधिक समावेशी निर्णय लिए जा सकते हैं, इसलिए समाज और राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं को हर स्तर पर नेतृत्व के अवसर मिलने चाहिए। दोस्तों, यह आज के दिन हमें याद दिलाता है कि कूटनीति और वैश्विक शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण, साथ ही समावेशी विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण है और यह दिन असमानता को दूर करने और समान अवसर सुनिश्चित करने का संदेश देता है, जो है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो आज ही के दिन प्रतिवर्ष 24 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक गीत और कुछ संदेश।

0: मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: दोस्तों, कहा गया है कि बड़ा इतिहास घड़ना है तो अच्छी बातें जरूर पढ़ना है। दोस्तों, अच्छा पढ़ना अच्छे व्यक्तित्व का संकेत है, क्योंकि ज्ञान से ताजगी बनी रहती है और ज्ञान से बढ़कर कोई पूंजी नहीं है। इसीलिए प्रत्येक युवा को अपना ज्ञान बढ़ाने और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए नियमित रूप से कुछ न कुछ सकारात्मक और ऐसा पढ़ना चाहिए जो जीवन में पढ़ते रहने से हमारी सोच, समझ और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि अच्छी किताबें जीवन में सबसे अच्छी मार्गदर्शिका होती है और उनसे मिला ज्ञान और समझ हमें सामान्य लोगों की भीड़ में एक अलग ही करती है, जिससे सफलता के लिए पढ़ने की आदत जरूर डालें। इसीलिए दोस्तों, कुछ न कुछ अच्छा नियमित रूप से जरूर पढ़ें। दोस्तों, आज के युवाओं के अंदर ये एक कमी है कि वे पढ़ने से कतराते हैं। वे मोबाइल, इंटरनेट या सोशल मीडिया में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट और सोशल मीडिया में समय निकालें, उसे यूज में लें, लेकिन अपने आत्मविश्वास बढ़ाने वाली वस्तुओं को जरूर पढ़ें। अन्य विषयों पर समय बर्बाद ना करें, क्योंकि दोस्तों, सोच और समझ को गहरा करें। प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर पढ़ें। और सुनते हैं दोस्तों एक प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत आपकी रेडियो सखी अर्पिता जैन को। कार्यक्रम समाप्ति की। नमस्कार।

अभी युवा श्रोताओं ने सुना उनका अपना कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफएम माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को हैं। लिए चलते हैं आपको विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, शुभ संध्या। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत है समीर का, संगीत है जतिन ललित का और फिल्म का नाम है गुलाम।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: नुसरत बद्र का लिखा गीत सुनिए श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। संगीतकार है इस्माइल दरबार और फिल्म का नाम है देवदास।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है रॉकी।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित

0: शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। गीतकार आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की और फिल्म का नाम है बैराग।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरे

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बाशु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
3: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
4: कौन लाया, कौन लाया?
5: कार्यक्रम में अगली आवाज है रेमो फर्नांडिस की, नगमा निगार है महबूब और फिल्म का नाम है बॉम्बे।

0: हर पल खास
1: बेचारा
2: भारत की आवाज भारत का दिल भारत का साथ
0: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद
0: सुनिए आपके पसंदीदा गाने दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है जी हाँ हृदयनाथ मंगेशकर सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार खूब मार आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ
0: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास
2: विविध भारती जो हर पल है आपके पास
4: साथियों कार्यक्रम की अगली पेशकश है गायक और संगीतकार राहुल देव बर्मन की आवाज में गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। समीर के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है नदीम श्रावण ने। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

0: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं, FM इंडेक्स 1.3 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर। शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करें।
2: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों की आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीवरेज सफाई के लिए सुपर सकर मशीन, कचरा उठाने के लिए अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन को रवाना किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के जन जागरूकता के लिए ब्रांडिंग ऑटो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजधानी जयपुर के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे।
3: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
2: समारोह में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा

0: लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का माध्यम बन रही है।
1: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, चार दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, पांच दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है, इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
0: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा, साथ ही ये प्रोजेक्ट प्रदेश का ग्रोथ इंजन साबित होगा। ये बात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज अपने आवास पर हुई पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उच्च स्तरीय बैठक में कही। श्री शर्मा ने रिफाइनरी की प्रगति और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही रिफाइनरी का शुभारम्भ करेंगे। बैठक के दौरान HRRL प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री को रिफाइनरी से निकल रहे विभिन्न उत्पादों के नमूने भेंट किए गए। गौरतलब है कि रिफाइनरी से कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का उत्पादन शुरू हो चुका है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विशेष अभियान शुरू किया गया है। 5 जुलाई तक चलने वाला यह अभियान महिला और बाल विकास विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक के स्थापना के साथ प्रवेशोत्सव और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने अपने क्षेत्र में घर घर संपर्क कर जन समुदाय को खिलौना बैंक की जानकारी देंगी। 3 से 6 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों का चिन्हीकरण कर अभिभावकों को 1 जुलाई के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को सुबह 9 बजे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक का शुभारंभ होगा। RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौर ने आज जयपुर लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मुलाकात की। श्री बागवेड़ी ने उनकी शिष्टाचार भेंट थी। गौरतलब है कि आयोग के सदस्य श्री केसरी सिंह को हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने CA इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में डोंबिवली के शार्दुल शेखर विचारे ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। अभिनव सतीश ने दूसरा और तीर्थ जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का मुख्य परिणाम आज जारी हो सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आज हुई बैठक में वीडियो भर्ती के अंतिम परिणाम का अनुमोदन किया गया। इस बीच बोर्ड ने आज सुबह कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नतीजे जारी किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 1967 में पासपोर्ट अधिनियम लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा और सशक्त नागरिक के संकल्प को दोहराना है। देश 2014 में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या के 777 था, जो अब बढ़कर 545 हो गई है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर पेश है समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
2: पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे छोटे और दूर दराज के शहरों के लोगों को आसानी से पासपोर्ट मिल सके। हाल ही में हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि देश में पासपोर्ट की बढ़ती तादाद बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या बढ़कर 138 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि अब पासपोर्ट मुहैया कराने की

0: पूरी तरह लोकतांत्रिक है। ये विकसित भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है।
1: भारतीय सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। नागरिकों को जागरूक करने और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। इसके जरिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना सेना तक पहुंचाने की प्रक्रिया समझाने और आपदा के समय नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के संग्राना 24 और 25 आरबी गांवों से इस ट्रेनिंग की शुरूआत हुई। ये कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। डीग जिले के कामा क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार कार ने करीब 10 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के शिकार लोग तीर्थराज विमल कुंड की परिक्रमा कर पैदल जा रहे थे। सभी घायलों को कामा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक हुई इस घटना से भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। प्रदेश में प्री मॉनसून की बरसात कई जिलों को भिगो रही है। आंधी बारिश की गतिविधियों के कारण पिछले कई दिनों से प्रदेश में हीट वेव से राहत बनी हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में अब तक 25 जिलों में असामान्य बरसात हुई है। 3 जिलों में अधिक पानी बरसा है, वहीं 3 में सामान्य और 9 जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज भी 20 जिलों में गरज चमक के साथ अलर्ट जारी किया है। वहीं कल उदयपुर को छोड़कर सभी संभागों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार हैं। 28 जिलों में येलो और श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। इस बीच आज हनुमानगढ़ में दोपहर बाद मौसम बदला और धूल का गुबार छा गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: हनुमानगढ़ जिले में लगभग 2 हफ्ते से लगातार दोपहर बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी है। कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि बिरानी इलाके में लगातार 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोठ मूंग, ग्वार, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मीना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कृत करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कृत करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज के संस्करण में जीत हासिल की है। ये पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन की ओर से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है। आयोग ने बताया कि इस वर्ष के चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद विजेता स्टार्टअप को 3.5 लाख रूपये का सीड ग्रांट मिला, वहीं उप विजेताओं को 2,20,000 रूपये का पुरस्कार दिया गया। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और

देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों को आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बीकानेर जिले में इन दिनों जल संरक्षण, शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर, कृषि, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। मॉनसून की आहट के बीच किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के प्रयास जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या में रही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनेक रेल परियोजनाओं और रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों पर काम चल रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय विधि तथा न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी भाग लिया। दोनों मंत्रियों ने आमजन के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन में योग के महत्व पर बल दिया। योग दिवस से पहले भी जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुर्वेद विभाग के विद्यार्थियों ने जूनागढ़ किले और पब्लिक पार्क में योगाभ्यास कर लोगों को योग अपनाने का संदेश दिया। वहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी जूनागढ़ किले में सामूहिक योगाभ्यास किया। अधिकारियों और जवानों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। जिले में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आम जन को राहत पहुंचा रहे हैं। शिविरों में लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भूमि संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रमाण पत्रों और लोगों की अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। रामसरा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में घुमंतु सासी समाज के कुछ परिवारों को निशुल्क आवासीय भूखंड के पट्टे प्रदान किए गए। वर्षों से स्थायी आवास के अभाव में जीवन यापन कर रहे इन परिवारों को अब अपना घर बनाने का आधार मिल गया है। लाभार्थियों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत के प्रति आभार व्यक्त किया। उधर पशुपालकों के लिए भी सेवा शिविर उपयोगी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कई पशुपालकों ने अपने दुधारू पशुओं का बीमा कराया। पांचू क्षेत्र के बंदरा गांव में आयोजित शिविर में पशुपालकों को योजना की जानकारी दी गई और मौके पर ही बीमा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों, जैविक संसाधनों के उपयोग और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। कृषि विभाग द्वारा जिले में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए कृषि सखियों और प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे गांव-गांव तक इसकी जानकारी पहुंचा सके। जल संरक्षण को लेकर भी जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, बारिश के पानी का संचयन और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुई। लोगों को पानी के संरक्षण और जल स्रोतों की देखभाल के लिए प्रेरित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला परिषद परिसर में एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर भी पौधरोपण किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से श्री डूंगरगढ़ में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े पात्र परिवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए

0: किया गया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज 4 जुलाई में जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम रे शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम रे प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र में भी गाई खिलौना बैंक शुरू करया जावेला और देश में नहना और दूर दराज

0: కాంప్లెక్స్ హకాం ది ప్రగతి రోజ్ జాయిజో లేవన్సారు అలా ఎహల్కార సగం మీటింగ్ కిన్ని ప్రదేశ ఆంగన్వాడీ కేంద్ర మై బి గై ఖిలోనా బ్యాంక్ సరు కరియా జావెల్లా అర్ దేశ్ మై నహనా అర్ దూర్ దరాజ్ రా శహరా ని జనతా తాయి పాస్పోర్ట్ రో సుబితో కు గావన్ సారు పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్ర రా నెట్వర్క్ మై లగాతార్ బధోత్రీ समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर विधानसभा हलका माय विकास रा 631 करोड़ रुपए बत्ता खर्च वाला काम री शुरुआत कीनी और पूरा भया काम जनता ने सौंपया ई मौके राखी जा कार्यक्रम माय मुख्यमंत्री नाणिया री सफाई सारू सुपर सकर मशीन कचरो धुलो करण री नवी मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन ने रवाना कीनी स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 रा बारा माय जाग जगावन रा मकसद ब्रांडिंग ऑटो रिक्शा नई हरी झंडी बता रवाना कीना श्री शर्मा पात्र लोगों ने जमीन हक वाला स्वामित्व कार्ड दीना कार्यक्रम माय मुख्यमंत्री कहो कि सरकार राजधानी जयपुर रा विकास सारो लगातार काम कर रही है वे बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत करेला
1: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
0: शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का जिक्र करता था का मुख्यमंत्री कहो कि ऐ शिविर जनता की परेशानियां तुरंत आगे करण का जरिया बन रहा है।
1: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
0: कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जयपुर के सांसद मंजू शर्मा समेत जनता रा कई नुमाइंदा और मोटी तादाद में जनता मौजूद रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मारा रहवास माथा अहलकारा सागर मीटिंग कर और पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रे बारा में विगतवार जानकारी लीनी। मीटिंग में श्री शर्मा कहो कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान देश री ऊर्जा हिफाजत रो मजबूत खंभो बनवा सागे, प्रदेश रो ग्रोथ इंजन साबित होला। राज्य रा आंगनबाड़ी केंद्र में 3-6 साल उम्र ताई रा बच्चा सारू शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रो खास अभियान चलाई चियो है। महिला और बाल विकास विभाग री ओर 5 जुलाई ताई चलाया जावन वाला ई अभियान रा तहत आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक खोलन सागे, प्रवेशोत्सव और पौधा रोपण रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा निदेशक वासुदेव मालावत बतायो कि 30 जून ताई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकारी मदद घर घर जार खिलौना बैंक री जानकारी दी जावेला। इस आगे 3-6 साल ताई रा स्कूल नी जा रहा बच्चा ने पिछाण कर और वारा मायता ने 1 जुलाई ने आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक री शुरुआत रा कार्यक्रम सारू न्योतो दियो जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग रा कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह आज जयपुर रा लोक भवन में राज्यपाल हरिभाव बागड़े शिष्टाचार भेंट कीनी। आयोग रा सदस्य केसरी सिंह ने हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष री जिम्मेदारी दी ची है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI मई 2026 में लीरी जी सीए इंटरमीडिएट परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। परीक्षा में डोंबिवली रा शार्दुल शेखर विचारे अव्वल रहा, अभिनव सतीश दूजी और तीर्थ जैन तीजी ठौर में थे रहा। राजस्थान

0: कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। बोर्ड रा अध्यक्ष आलोक राज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा रो मुख्य परिणाम रो ऐलान ही आज जारी भवन रा आसार जताया। वे बतायो कि आज भी मीटिंग में वीडीयू परीक्षा रा अंतिम परिणाम ने मंजूरी दे दी रही जी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। वो दिन साल 1967 में पासपोर्ट कानून लागू होवन री याद में मनायो जावे है। इनरो खास मकसद सुरक्षित पासपोर्ट आसान सेवा और मजबूत जनता रा संकल्प रो दोहराव है। पासपोर्ट सेवा दिवस रे बारा में पेश है समाचार कक्ष सालेहा गाजी री रिपोर्ट।
1: पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र री पहुंच लगातार बढ़ाई जा रही है। जिनो नाना और दूर दराज रा शहरा रा लोगा ने ये आसानी में पासपोर्ट मिल रहा है। हाल ही में व्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर बतायो कि देश में पासपोर्ट री बढ़ती तादाद उम्मीद में बढ़ोतरी रो दर्शा करे है। माली साल 2025-26 में पासपोर्ट री तादाद बढ़कर 138 लाख वेगी। वे बतायो कि पासपोर्ट मुहैया करावन री प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। आ विकसित भारत बनावन रा काम में प्रेरणा देवन वाली खास ताकत रा तौर काम कर रही है।
0: फौज री ओर श्री गंगानगर जिला रा सरहदों लागोड़ा संग्राना 24 और 25 आरबी गांव में जनता में जार जगावन और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने रा मकसद वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाई चियो है। इन जरिए शंका लायक हलचल री जानकारी फौज ताई पुगावन री प्रक्रिया बतावन और आपदारी भगत जनता और फौज बीच मदद बधावन रे बारा में जानकारी दी जा रही है। वो कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। डीग जिला रा कामा हलका में आज एक तेज जा रही कार करीब 10 जना ने टक्कर मारती नी। कार री फेंट में आया लोग तीर्थराज विमल कुंड री परिक्रमा कर पैदल जा रहा हा। जख्मी लोगों ने कामा रा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराई चिया जठों घना जख्मी 5 जना ने भरतपुर रा आरबीएम सफाखाना में रेफर कर दिया चिया। कार चलावन वालों मौका फरार फेंक्यो। अरब मौसम प्रदेश का कई हल्का में चौमासों पहली री बिरखा भेवाणु गर्मियों सत्ता मिली है। जल संसाधन विभाग को मिली जानकारी रे मुजब ई महीना माए हाल ताई राज्य रा 3 जिला माए बत्तो 3 माए सामान्य और 9 जिला माए सामान्य कम में बरसियो। मौसम विभाग आज ही 20 जिला माए गरज चमक सागर बरसात फेवन सारू चेतायो है। महकमारे मुजब उदयपुर रे अलावा बाकी संभागा माए काल एक कठे कठे आंधी बारिश रा आसार है। 28 जिला माए येलो और श्री गंगानगर चूरू और बीकानेर जिला माए बरसात रो ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है। ये बीच आज हनुमानगढ़ माए दोपहर पाछे मौसम पलट गयो। माणी खबर नवीस बतायो के वठे मोकड़ो धूलो उड्यो।
2: हनुमानगढ़ जिले में लगभग 2 हफ्ते से लगातार दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी हुए कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि बिरानी इलाके में लगातार 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोठ मूंग ग्वार मूंगफली बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मीना देवी आकाशवाणी समाचार हनुमानगढ़।
0: आज बूंदी जिला रो 785 स्थापना दिवस मनाई चियो। ई मौके जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग री ओर भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। ऐतिहासिक गढ़ पैलेस में शहनाई बजावन और गणेश पूजन रा कार्यक्रम राखी चिया। स्थापना दिवस रा सिलसिला में देसी परदेसी सैलानियों ने खास स्मारक में मुफ्त दाखिलो दिए चियो। हॉकी इंडिया 5 और 14 जुलाई ताई ब्रिटेन रा दौरा सारो 24 सदस्यों वाली जूनियर महिला टीम रो ऐलान करती नो है। खेदेम शिलेमा चानू टीम री कप्तान बनाई ची है। भारत

टीम युवा कोच टिम व्हाइट री अगुवाई में जूनियर एशिया कप समेत आती अंतर्राष्ट्रीय होड़ा में तैयारी का सिलसिला में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 28 जून में विचार बतावेला। ये कार्यक्रम रे 135वीं कड़ी फैला। इसारो आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 में 26 जून तक राय दे सको हो। नंबर जो सुन ले रहा हो सा 1800-117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम के जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला एहलकार सागर मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र में बेगाई खिलौना बैंक शुरू करिया चावेला। देश में नाना और दूर दराज राज शहरा ने जनता ताई पासपोर्ट रोसुविधा को गावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्र रा नेटवर्क में लगातार बढ़ोतरी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थे। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवेरे 9 बजे हिंदी में प्रसारित कर

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के एफएम माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर। शाम के 7 बजे अब किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम हमड़ा वाले सब किसान भाइयों ने बहनों ने सोराडे थकी नानी बहनों राम राम राम राम। किसान भाइयों सब भाई खेती में लाया थका है भाई, खरीफ फसल ने बुआई मई भाइय ने पानी पड़ी जुए मई कहीं भाई बूंदा बूंदी कहीं बाकी भी है। किसान भाइयों आज जी मानसून है ई तो आवेगा क्योंकि भैया जरूरी नो अब्बू से पण जी आपने खेतीबाड़ी नो काम है ये आपने जारी रखू है भाई। खेती नो जी कहीं भाई ने जुताई नो काम है या देशी खातर नाखवा नो काम है तो वो काम है ये आपने समय ऊपर करवा है। जय भाई ने पानी पड़ी गए जमीन मिट्टी में आपने नमी बनी थकी है तो ये भाई भी कहीं बुआई भी करी रहा था कहीं तो किसान भाइयों आप बुआई करते वक्त भी अपन छोटी मोटी बातों ध्यान रखो जरूरी है। अन्न खास करी ना खरीफ फसल ने अच्छो लाभ हरु आपने सही तरीका था कि आप पानी नमी खेतर में जरूरी है नानी बुआई है समय ऊपर करवी है। जून ने मध्य सप्ताह ना जुलाई ने लास्ट हफ्ता तक अपन करी सका जुलाई तक क्योंकि पसे अपन करवा जंगा तो पसे अपन पसाड़ी पड़ी जाएगा सही साठ अपनी फसल नहीं बनी सके इन उत्पादन अच्छू नहीं मिली सके। बुआई करते वक्त भी अपन छोटी मोटी बातों ने ध्यान रखव है खास कर बीज ने उपचारित करव है अच्छी किस्म बीज नो चुनाव करवो है। बुआई समय जल्दीबाजी अपने नहीं करवी खेतर में नमी ने देखी पसे बुआई करवी है ने खेत में कितनी मात्रा में नमी है भाई 4-5 इंच मिट्टी में नमी जरूरी है। बुआई समय अपन कोई भी फसल नहीं बुआई करा इन अपने देखू है कि भाई नमी कितनी मात्रा में है इन ध्यान करीन पसे बुआई करवी है ने खास करीन

0: चलो भगत आबे तो बहुत अच्छी भाई। गोविंद के एक महान पुरुष,
1: महान पुरुष से वर्षी
0: न्याणी जनता ने भाई बहुत देनी,
1: बहुत उपहार करो जनता ने बसारी ना की
0: एक मार्ग ने
1: मार्ग बताड़ो। अरे मार्ग माते एंडो तो तने ठीक थी जो अंते एना मार्ग माते इंडिया भगत तेरा भक्त ना बोलो उगार थी जो गामो गाम डंकावा की जा
0: हासो बोलवो
1: सही रास्ता सालवो। हाँ जूटू कुटू तो सुरी के ऊपर है
0: सही बात,
1: एवं बात है बार से न खोड़ी ले न खोड़ा निकले से जूटू तो साले इसमें जरी है एवं है
0: सही बात है। अपने भाई पालन करो,
1: पालन करवो पड़े अपने तो तुम्हारा महाराज ना पालन करवो पड़े
0: बिल्कुल।
1: गुरु महाराज ने वसन जरूर पालवो है तो अपनी शिक्षा प्राप्त थी जाए मामो एवं अपने मारे मांझी रस्ते मिले जाए तारे काम पार पड़ी जाए गुरु ना सहारा एंडो तो सब आप पार लगी जाए
0: आनंद वगत। खेती बाड़ी में लग गया था?
1: हाँ खेती बाड़ी में लग गया था।
0: पानी पड़ी तुम्हारे?
1: पानी पड़ियो बासी, पानी पड़ियो। आने पहले उनाला ना टाइम खेतरे ना कीना चे हेडा पाड़े साफ करियो ना कूड़ा कचरा साफ करिया तुमने कूड़ा कचरा साफ नहीं करो तुम्हें उजाई फैले
0: खरी बात।
1: उन्हें बाद जो खुआ है आज मटर लागी ले तो थाने काटी ने पहले हमें रोप बनाइयो बीज बोई रोपा बदले
0: धान से हाल में फसल
1: हाड़ी फसल
0: बताओ
1: हार हमारे खूब पाके बासी हार तो खूब पाके।
0: पहले आप पौधे तैयार करो पड़े?
1: पौधे तैयार करो पड़े पहले रोप बांधने पड़े पैसे रोप तैयार करे ना पैसे अपने गायों भरा बगे पानी पड़ी जाए पैसे पासो उपाड़ी पासो रोपते बदल।

0: ये बना बुक रहे रोका बाद बस ये हार बढ़िया बना है।
1: अच्छा
0: कारी बासमती जर जीरा रुपये बड़े एक एक सौ सौ रुपये बड़े।
1: अच्छा अच्छा
0: तारे पास जाएंगे बना ही पौधू
1: अच्छी फुटान था
0: अच्छी फुटान था जोरदार फुटान था।
1: हिसाब में होना सा तो
0: हिसाब होना बिल्कुल प्योर ये देशी खातर नो उपयोग करवो पड़े पानी तो जुगे था पानी तो जुगे था रे पानी में ऊपर वाला पड़े थे ये पर आई जाए इन्हें कमी पड़ जाए तो खुले थे कि मर जाए तो ये बोर थे जा खुला थे जा ले का कमी पड़ती नहीं
1: नहीं हरनी फसल तो एकदम अच्छी
0: अच्छी फसल है जोरदार फसल है।
1: आनंद सारा वगैरह भी डांडा में कम आ जाए
0: सार तो खूब सारो तो खूब मरे तारे सारनी तो कीमत है सार तो मरे तो लारो लारो ट्रेक्टर पर लगाओ तो पांच पांच दस हजार रूपया मांगे तो कहाँ लाओ घर अपने पोते मेहनत कर कमाव पड़े
1: भाई सारा ही पशु काम में लगे
0: अनाज अपने खावा काम में लगे आई बेस्ट चावल बने चावल भी कितना मोगा जाए हार भी कितनी मोगी निकला है।
1: आ चावल तो तुम्हारा तो हार खाती हो गया
0: था काले कमर पके बासमती था
1: बासमती अच्छा बोले एक सुगंधी हार आ गई
0: सुगंधी हार आ गए ये पाके।
1: अच्छा
0: हाँ
1: बासमती तो भाई अच्छी किस्म
0: किस्म फसल है गाड़ी बता रहे थे साहब
1: खाने तो हारनी फसल तो कितने बर्फ पकी जाता
0: हाँ तो दो चार महीने पकी जाए
1: सही बात
0: दो तीन महीने में तो कम्प्लीट दे जाए
1: तारे सीधा साधा आदमी साधा मन मलिया में अच्छी बात अपने मरिया थका साहब आपड़ू बात तो बस आगर क्षेत्र पूरा हम लोग तो पैसा हम जाते जाते बस किसान भाई आप पशु वगैरह देखभाल पास
0: करवी जुगे करवी जुगे देखभाल तो पशु करवी जुगे गाय है भैंस है अपने बड़द है भाई गुदा है सबने सेवा साखड़ी करनी पड़े ने ध्यान रखो पड़े क्यों के क्या बीमार थी जाए बीजू थी जाए क्या पानी में मौसम है तो ये बीमारी भी बधारे आ जाए
1: खरे
0: पशु में तो आ जाए
1: पशु अबूल
0: पशु अबूल
1: सुमासा ने दौड़ाई
0: सुमासा ने दौड़ाई
1: हम एने मच्छर तो मक्कत की बीमारी बचा
0: बसा कई पंखा लागी जाए है क्या बीजू अच्छी हवा में बांधो तो ये सुरक्षित रहे
1: ये
0: भी आपने आपने तो बिस्तर उठी नहीं जाइए प्रकोष आलू कर नहीं जाइए मच्छर न जाइए वो तो बोलते हैं अबोले जाइए
1: अबोले
0: यही सुरक्षा आपने भरपूर कर दी
1: बिल्कुल भाई नीली पत्ती
0: सारे नीली तो हाड़ो बड़ा बोकड़े लाकड़े बाड़े सूर्य बाड़े उन्होंने नाकी दो नहीं तो हाड़ो थी जाए तो मच्छर सब नहीं
1: जाए
0: इन्हें मवेशी ने बदले बढ़िया थी जाए
1: बिल्कुल लालू भगत आप मल्या ने अमन बहुत खुशी ने आपे बे शब्द अमन बताई बहुत बहुत धन्यवाद साहब राम राम
0: राम राम राम राम राम।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
6: आप जानते हो ना मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
6: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: वाह भाई, किसान भाइयों, लालू भाई ने बात होने है, नहाते भाई या विज्ञापन भी होने नहीं। अबे आपने बात कर खास करीने, देखो आजकल भाई नवा बाग बगीचा भी लगाड़ वो चाहे तो आना समय लगाड़ी सके भाई। एनम अपने पहले देशी खातर गड्ढे में नाखू है ने जे पौधे लगाड़ तो ये हाजना टाइम लगाड़ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन दोपहर में समय में लगाड़ी देगा तो पौधे दो है ही मुरझा जाएगा ने जी पौधे लगाड़ ने इन्हें बाद अपने पानी आलवे भाई पौधे ने जी पानी आला तो भी अपने ध्यान रखो भाई, खास कर आज हाजना टाइम में या सुबह टाइम में अपने पौधन पानी आलू है, क्योंकि दोपहर ने टाइम में अपन पानी पौधन आलंगा तो जमीन तपी जाएगा, इन्हें थकी हुए कि आप पौधे ही मुरझा जो है ऊन बराब जाए, इसलिए अपने भाई ठंडा मौसम में पानी आलू है पौधे ने नहीं। पौधे ने अपने कोई लकड़ी थकी खोटा थकी पौधों न सहारो लेने बांध दे हुए ताकि पौधों हवा थकी या पानी थकी आडू नहीं पड़ सके। किसान भाइयों आप पौध पेड़ पौधे लगाड़वा थकी खूब लाभ है भाई। आम है, कटहल है, नींबू है, आंवला है, ये वो पौधे लगाड़ूंगा तो उन्हें थकी अच्छी आवदानी भाई। आप थोड़ो पहले पहले पहले थोड़ी अपने समस्या आवे लेकिन आप पौधे बड़े थी जी तो लंबा टाइम तक अपने आवदा नहीं आले भाई। अपन पहले थोड़ी पानी वगैरह नहीं थोड़ी समस्या आवे पर आगाड़ी अपने अच्छू थी जाए, एट्ले आने छोटी मोटी बात ने ध्यान में राखी बाग बगीचे ने ध्यान राखव जरूरी है। किसान भाई बातें चाली रही हजू आगाड़ी भी करूंगा पर हाजना टाइम है तो एक बढ़िया भजन होना पसा गाड़ी बातें करा।

वाह भाई, किसान भाई हाजना टाइम ने समय में बढ़िया सुभजन हूँ, आनंद आ गयो भाई। आजकल काम ना दाड़ा मन एकदम शुद्ध थ गयो। किसान भाई वाते करवाने घड़ी इच्छा थी पण आ सोरा नो टाइम पासो पूरो थतो आयो। आज आपण सुटा पड़ा, काले नवी जानकारी लेने सोरा ऊपर फ्री मळंगा। आज नानू भाई ने हालो आज्ञा आवजो। राम राम, राम राम।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनबा वाला सगला श्रोताओं ने आपकी बेन तमरहाड़ा को घणु घणु राम राम और आशा बेन आपने भी राम राम सा
1: राम राम सा तमरहाड़ा जी आपने भी मारा घना घना राम राम और कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोताओं ने अपना काश्तकार भाई ने आशाधा भाई का भी घना घना राम राम सा। और देखो सर रामा श्यामा की साथ ही थोड़ी सी चौपाल पर आज बात आप यह करें ना कि आपना जी का काश्तकार भाई है वे यही चाहे छे भाई जितनी भी वे मेहनत करें ना उनको पूरो पूरो फायदो बत्तो फायदो वाकी फसल को चोखो उत्पादन यो वाने जरूर से मिले। और इके लिए वे प्रयास भी करे छे भाई चोखो बीज लावे छे चोखी किस्मा उगावे छे फिर उनकी देखभाल फसल की करे छे कीटनाशकों को छिड़काव भुड़काव भी करे छे समन्वित उर्वरक प्रबंधन भी करे छे सब चीज टेम सारू करे भी छे। पर फिर भी कई बार तमर जी का हो छे ना कि शुरुआत में अगर आप कोई छोटी सी भी चीज से ऊपर ध्यान देबो भूल जावा छे तो सीधो सीधो प्रभाव पड़े छे अपना उत्पादन पे। यहाँ की सभी जाने चाहिए कि जो काम तलवार को छे उन्हें सुई कौन कर सके और जो काम सुई को छे उन्हें तलवार कौन कर सके। हर चीज की हर काम को अपनो एक महत्व हुए छे। वे आपने जो खेत की माटी हुए छे ना उनकी जो उपजाऊ क्षमता हुए छे उनको भी उत्पादन में उतनी महत्वपूर्ण स्थान हुए छे। इतना अपना काश्तकार भाइयों ने चाहिए कि वे आपकी जी की खेत की माटी छे ना उनको ही जांच परख जरूर करा लेवे और देख लेवे कि वहां की माटी में वहां का खेत की जो माटी छे उनके मायने उत्पादन क्षमता कितनी छे।
0: बिल्कुल सही बोल रहे हो आशा बहन आप के देखो आपन जो मेहनत करा हाँ उनको फायदो थोड़ी सी चूक के कारण न मिल पावे ना तो आपने घणो पछतावो बचे और फिर आपने यह सोचा चाह कि भाई आपने तो अतरी मेहनत करी है फिर आपने फायदो क्यों नहीं मिलो आपने फसल चूकी क्यों नहीं हो रही है तो इनको सारो कारण छे कि मृदा की जांच करावा अपन मिट्टी की जांच करावा कि इनमें कशा कशा तत्व छे और कसी कसी फसल के लिए ये फायदा बंद छे क्योंकि अगर आपने फसल बाई चे उनमें पोषक

0: तुम चुगे मिले कोई नहीं वो छुकी फसल पैदा न हुआ तो फिर वहां सो काय फायदो। और एक बात और चे कि फसल चक्र भी आपने अपनाने चाहिए, भाई फसल अपन बदल बदल के बोवानी तो उनसे भी आपने फायदो मिले चे। और मृदा की जो जांच है, मिट्टी की जो जांच है, वह तो आपने करा ही लेनी चाहिए।
1: और अगर माटी की जांच में तवरजी या रिपोर्ट आवे चे भाई आपके खेत की जो माटी चे वह क्षारीय चे, तो दिखती सी बात चे भाई क्षारीय माटी में उत्पादन कम हुए चे, तो क्षारीय माटी का जो सुधार की सिफारिश रिपोर्ट के मुजब करी जावे चे, तो काश्तकार भाइयों ने वह तत्वों की भरपाई कर लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वहां का क्षेत्र की या वहां का खेत की माटी अगर क्षारीय चे तो उनके अनुसार ही जो फसला चोखो उत्पादन दे सके वहीं फसलों की वहां बुआई करनी चाहिए, क्योंकि अगर माटी क्षारीय चे वह उपजाऊ भी थोड़ी कम चे और आप ऐसी ऐसी फसल ले ले ला जिन्हें की पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत है जो कि आपके खेत की माटी में छे कौन है, तो सीधो सीधो प्रभाव पड़े लो उत्पादन पे और उसको भारी नुकसान यह हुए चे कि आप महंगा बीज ले वाला आप सोचला इतनी बढ़िया उन्नत किस्म छे पर मैं पैदावार को नोरी, तो ई तई पहली आप जांच करा लो क्षारीय माटी छे तो उनके अनुसार उनमें जो सुधार का काम छे पहली बात तो उन्हें करो और फिर उन्हें करवा के बाद भी वे ही फसलां बो जो आपका क्षेत्र का हिसाब से उन्हें उत्पादन चोखो दे सके जे।
0: बिल्कुल सा बहुत ही बढ़िया जानकारी है या अरे आप जो बताया किसान बहन भाई ने वह ये पसंद भी आई होगी और देखो ये भी ध्यान रखेगा कि भाई आपने कहीं कहीं आप ध्यान रखें क्योंकि अब बुआई को टाइम भी करनी चाहिए बुआई भी करेगा ही सही, तो आप ये पहले से ही जांच पर कर लेगा भाई कैसी मिट्टी आपने कैसी फसल ने फायदो देवेली। और देखो एक बात और से आशा बहन के बात ही बात आप कर रहे हैं लोकगीत की बारी आज ना आदि के
1: बिल्कुल आवली सा लोकगीत की मैं सोच रही थी भाई आज थे ही खेदे वो थोड़ी सी था कि मनवार पर था कि पसंद पई एक गीत सुना देवा मैं भी सुन लू जो अपना सुन बड़ा श्रोता चे वे भी सुन लेवा और गीत में सुनता सुनता ही विषय विशेषज्ञ भी बारह आर बैठे रहा चे तो वन भी फटाफट से बुला लेवा आप और आज तो स्टूडियो से लाइव ही सीधी वहां की बातचीत हो गई
0: तो लो सा पहले सुन लाइ लोकगीत
1: आओ सा सगला ही मिलर सुना।

0: कंवर जी मोर तो बोल दिया और आपा सुन भी लिया, अपना काश्तकार भाई भी सुन लिया और मोल के बोलता बोलता ही देखो स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ पधार चुका है। सबसे पहली ओरखाण वाकी करा दिया आप छे कल्याण दत्त वर्मा, सहायक निदेशक कृषि राजस्थान कृषि योजना जयपुर। कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है वर्मा साहब। राम राम सा।
1: राम राम सा किसान भाइयों।
0: और जिया की आज को आपनो जी को विषय छे वह छे खेत बचाओ अभियान। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय छे और बहुत ही विस्तार से लागे छे, आप जानकारी भी देवेला
1: जी।
0: तो तमर जी बताओ सा काई पूछना चाह रहे छो सबसे
2: पहले? सबसे पहले तो मारो पूछबो आपसे यो ही है सा के यो खेत बचाओ अभियान काई छे?
1: बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। खेत बचाओ अभियान केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय द्वारा ये संचालन किया गया है मध्य प्रदेश से और ये राष्ट्रीय स्तर पे इसका शुभारंभ किया गया है। ये जो अभियान है मुख्य रूप से मृदा की गुणवत्ता को लंबे टाइम तक बनाए रखने के लिए कि उस जमीन को दादा खरीदे और पोता उसका उपयोग करे, इस अवधारणा को लेकर के कि लंबे समय तक उस मृदा की जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसमें उर्वरकों कीटनाशकों का अत्यधिक जो उपयोग हो रहा है, अंधाधुंध प्रयोग जो हो रहा है उस उपयोग को कम करने के लिए वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए किसानों को प्रोत्साहित करने के ऊपर ये जो अभियान है ये केंद्रित है। हाँ। और ये अभियान जो है 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे देश में संचालित किया जा रहा है।
2: तो सर ये अभियान के माध्यम से किसानों ने काई काई जानकारी दी जावेली?
1: बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। ये जो अभियान बहुत बड़ा अभियान है, इस अभियान के माध्यम से किसान भाइयों आपके पास में राजनीतिज्ञों के द्वारा, कृषि विभाग के विशेषज्ञों द्वारा, इसमें ICAR जो इस देश की बहुत बड़ी अफेक्ट संस्था है उसके द्वारा भी इन प्रोग्रामों के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होकर के भाग लिया जाएगा और आप लोगों को ये जानकारी दी जाएगी कि मृदा परीक्षण अपने खेत का करवा करके और मृदा परीक्षण क्या

0: आधार पर ही आप संतुलित पोषण अपने खेत में दें, अपने खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप बनवाएं और समुचित पोषक तत्व प्रबंधन अपना करके ही आप अपने खेत में पोषक तत्वों की आपूर्ति करें। आप जो अंधाधुंध तरीके से जो उर्वरकों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से बचने के लिए आप लोगों को समझाइश करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के माध्यम से ये भी जानकारी दी जाएगी कि जो हमारे पास में जो जल है वो बहुत ही अल्प मात्रा में है और कम मात्रा में है, उसका समुचित उपयोग हम किस प्रकार से करें, जल संरक्षण भी हमें, जल संरक्षण की जो विधियां हैं उनको भी हमें अपनाया जाना है। जल को किस प्रकार से हम हमारे खेत में जो फसलें हैं उनमें किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, फवारा है, पाइपलाइन है, जल होज है, डिग्गी है, ड्रिप सिंचाई है, रेनगन है, इन सब के माध्यम से हम इन सब का उपयोग करते हुए पानी की बचत करें, उन्नत बीजों का हम इस्तेमाल करें। यदि हम घटिया लोकल या कम उपजाऊ बीजों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे खेत में उपज के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस प्रतिकूल प्रभाव का निश्चित रूप से हमारी उपज पे, हमारी आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़ेगा। इस अभियान के माध्यम से किसानों को यह भी बताया जाएगा कि बीज उपचार, प्रत्येक फसल को बोने से पहले बीज उपचार करके ही हम फसल की बुआई करें। जिस प्रकार से एक बच्चे का जन्म लेने के बाद में उसको सुरक्षित करने के लिए उसमें किसी प्रकार के रोग ना लगे और उसका पूरा जीवन काल जो है वो पूरा सुरक्षित रहे, रोगों से उसकी रक्षा हो, इसके लिए उसके बचपन में ही कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से फसल में भी जब बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद में जब फसल कटाई तक की स्थिति में उसमें किसी प्रकार के रोग ना लगे, कीट ना लगे, इसलिए बहुत कम न्यूनतम दवा कीटनाशी रसायनों के उपयोग के माध्यम से उसको बीज उपचार करें। जैव पदार्थ, जो जैव रसायन जो है उनके माध्यम से हम बीज उपचार करें, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जैविक, उनके माध्यम से हम इस्तेमाल करें, हरी खाद का इस्तेमाल करें। आधुनिक जो वैज्ञानिकों के द्वारा, कृषि अधिकारियों के द्वारा जो तकनीक बताई जाती है उसका हम फसल की बुआई से लेकर कटाई तक हम इस्तेमाल करें। उन्नत कृषि यंत्रों का हम इस्तेमाल करें, अच्छी जो नवीन कृषि पद्धतियां हैं उनका हम इस्तेमाल करें। ये अभियान जो है नकली उर्वरकों, नकली बीजों, कीटनाशकों के खिलाफ भी एक जागरूकता बढ़ाए जाने वाला अभियान है। और किसानों, किसान भाइयों, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आप लोगों को दी जा रही है, इसमें सभी किसान इसमें अपना पंजीयन करावें और इस योजना का भरपूर लाभ उठावें। फसल बीमा योजना राज्य और केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से प्रत्येक किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीयन करवा करके और इस योजना का पूरा भरपूर लाभ लें। तो किसान क्रेडिट कार्ड प्रत्येक किसान बनाए, तो ये जितने भी विभाग द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं का लाभ किसान भाई उठावें, ये इस अभियान के माध्यम से किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दे रहे हो सा। और देखो आशा बहन, मैं देख रही हूँ कि आपका मन में भी कोई प्रश्न उठ रहे कि मैं भी वर्मा साहब से कई प्रश्न करूँ, तो आपको कई प्रश्न है सा?
2: बिल्कुल, देखो सा, इतनी सारी बात आप बताया, काश्तकार भाई तो सुन ही रहा था, साथ में मैं भी बहुत ही ध्यान से सुन रही थी कि शुरुआत में आप जो बताया था भाई ई अभियान ने चलावा को मुख्य कारण भी ऐसे भाई जहाँ दादो खरीदे और पोतो भी उन्हें आगे काम लाभ लेवे, तो एक तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि सरकार जो ई विषय के बारे में सोची, ई अभियान ने चलावा की, तो उनकी जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा एक मुख्य मोटा जो उद्देश्य है, कई उद्देश्य ने लेर इन्हें चलाये गए होगा?
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखो आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास में यह है कि आज जो खेत के अंदर जो अन्न का उत्पादन किसान भाई कर रहे हैं वो मुख्य रूप से अंतिम उपभोक्ता तक, पूरे देश के नागरिकों तक पहुंचता है वो अन्न का उत्पादन, और भोजन सुरक्षित भोजन हो और प्रदूषण रहित भोजन हो, खेत से चलकर किसान या किसान हो या आमजन हो, खेत से चल करके उसकी थाली तक आने वाला जो भोजन है वो एकदम स्वच्छ हो, वो एकदम किसी प्रकार के प्रदूषण

मुक्त हो, यही मुख्य रूप से कि खेत से चलकर जो थाली तक आने वाला जहर है उसको रोकना इस अभियान के माध्यम से मुख्य उद्देश्य है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 60 करोड़ लोग प्रतिवर्ष खाद्य जनित बीमारियों से प्रभावित होते हैं। वो खाद्य जनित बीमारियां जैसे बच्चों के अंदर डायरिया है, विभिन्न प्रकार के रोग हैं, चर्म रोग हैं, और इन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं इन खाद्य जनित बीमारियों से वो बच्चे प्रभावित होते हैं। और बच्चों में किसी प्रकार का रोग ना हो तो बच्चों को यदि हम सुरक्षित कर लें, आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से सुरक्षित होगी। इस चीज को देखते हुए इस अभियान की आवश्यकता महसूस की गई। और इसमें

0: बच्चों के अंदर डायरिया है, विभिन्न प्रकार के रोग हैं, चर्म रोग हैं, और इन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं इन खाद्य जनित बीमारियों से वो बच्चे प्रभावित होते हैं। और बच्चों में किसी प्रकार का रोग ना हो तो बच्चों को यदि हम सुरक्षित कर लें, आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से सुरक्षित होगी। इस चीज को देखते हुए इस अभियान की आवश्यकता महसूस की गई। और इसमें किसान के द्वारा जो उत्पादित अन्न है, दलहन है, तिलहन है, सब्जियां है, ये सभी प्रकार के जो खाद्यान्न है ये स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, इस प्रकार खेत से चलकर थाली तक आने वाला जो भोजन है वो खाद्यान्न हानिकारक जीवाणुओं से, रसायनों से, प्रदूषण से मुक्त होकर के उपभोक्ता तक, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे। ये मानव शरीर के ऊपर इनका किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ये मुख्य रूप से कई स्तरों में इस चीज को देखा जा सकता है कि प्रथम तो ये जो है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। खाद्य जनित बीमारियों तथा डायरिया, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, चर्म रोग, लीवर, किडनी, हृदय रोग, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां जो है लाखों लोगों को प्रभावित करती है। दूसरा जो है कि स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर जागरूकता का संदेश देना कि सुरक्षित भोजन देना एक साझा जिम्मेदारी है, राजकीय विभागों की ही नहीं, अन्न उत्पादन करने वालों की भी है, अन्न वितरण करने वालों की भी है, अन्न को जो परिवहन करने वालों की भी है। ये साझा जिम्मेदारी है हम सबकी कि हम किस प्रकार से अंतिम उपभोक्ता तक सुरक्षित भोजन किस प्रकार से दे सकते हैं। तृतीय स्तर पर यह है कि जो खाद्यान्नों की जो आपूर्ति की जा रही है उसमें, उस श्रृंखला में हम सुधार करें, वितरण प्रणाली को हम स्वच्छ बनाएं, मानकों को सुधारने के लिए प्रेरित करें। चतुर्थ स्तर पर यह है कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करें कि गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्धि कर भुखमरी को समाप्त करना, इसका मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। पांचवें स्तर पर हम ये देखते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन कर सुरक्षित भोजन से एक स्वास्थ्य के ऊपर कम से कम खर्च हो, इस बात के ऊपर भी इस अभियान को देखा जा रहा है।
1: जी, तो वर्मा साहब जी की आप बताया कि एक मुख्य मुख्य मोटा उद्देश्य कहीं छे, और जी की आप आज को विषय छे खेत बचाओ अभियान, भाई खेत ना आपने बचाने छे, अपना शरीर ने तंदुरुस्त रखने में तो आप टीकाकरण करावा छे, खेत ने तंदुरुस्त रखनी चाहिए तो सबसे मोटो काम से खेत की जो माटी चाहिए उन्हें उपजाऊ बनाना।
0: जी,
1: तो ई अभियान के तहत जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उनकी कितनी उपयोगिता है, कहीं बेहतर से यह बताओ।
0: देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बड़ी अच्छी उपयोगिता है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग होता है, उस रोग के निदान के लिए या उस रोग की पहचान करने के लिए, उस रोग को चिन्हित करने के लिए हम विभिन्न जांच एजेंसियों के पास में जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, और हार्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार की जांचें कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, और उन सब में एक निकल के आता है कि आपके शरीर में इस प्रकार की कमी है या इस प्रकार की अधिकता है, और उसके हिसाब से डॉक्टर उसका इलाज करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में भी जमीन का पूरा एक्सरे हमारे सामने आ जाता है कि हमारी जमीन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद है और कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, और जो पोषक तत्व मौजूद है, जो पोषक तत्वों की अधिकता है, उन पोषक तत्वों को अतिरिक्त रूप से हमें अंधाधुंध तरीके से हमारी जमीन के अंदर उनका उपयोग हमें नहीं करना है या उनका इस्तेमाल हमें न्यूनतम करना है। जिन पोषक तत्वों की हमारी जमीन में कमी है उन पोषक तत्वों को हम अतिरिक्त रूप से, हमें ये पता लग जाता है कि मेरी जमीन में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटाश की कमी है, या अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, तो वो सूक्ष्म पोषक तत्व या मेजर जो तत्व है वो सारे के सारे हम उस जमीन के अंदर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर हम पूर्ति करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कम खर्च में उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी, एक प्रश्न और मारा मन में उपज रहे हो कि संकेतिक जो पोषक तत्व प्रबंधन है यू कहीं है सा।
0: देखो।

0: बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा सवाल है। किसान भाई जब भी खेत के अंदर किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करनी होती है तो किसान भाई भाग के यूरिया के कट्टे के पीछे भागता है, डीएपी के कट्टे के पीछे भागता है। तो पोषक तत्वों की पूर्ति करना यूरिया डीएपी ही नहीं है किसान भाइयों, हमारे जमीन में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये बहुत प्रकार के पोषक तत्व हैं। और ये पोषक तत्वों की पूर्ति हम किस किस प्रकार से, कौन कौन सी चीजों से कर सकते हैं, ये हमें तय करना है। कि देखिए, रासायनिक उर्वरक, जैविक एवं जीवाणु खाद, संतुलित एवं समुचित समयानुकूल, किस समय पर कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फल फूल, औषधीय फसलें जो उच्च उत्पादकता के निरंतर तब पाने के लिए प्रबंधन तकनीकियां जो हमारे पास में है, पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, और इस प्रकार का संतुलित उपयोग जो है, सभी प्रकार के पोषक तत्व जमीन को मिले, इस प्रकार से हम पोषक तत्वों का चयन करें जिससे कि हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो लगातार बनी रहे। और इसमें वे सभी कौशल आते हैं जैसे मृदा है, मौसम के अनुसार है, जल आदि को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। और कम से कम पोषक तत्व बाह्य रूप से हमें उपयोग करना पड़े, मृदा, जल, मौसम, पर्यावरण, इन सब पे किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार से हम जो है उर्वरकों के रूप में यदि हम देना चाहते हैं तो मुख्य पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व उनसे हम पूर्ति करें। जैविक खाद पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए जो कंपोस्ट है, फार्म यार्ड मैन्योर है, केचवा की खाद है, हरी खाद है, फसलों में फसलों के जो अवशिष्ट बच जाते हैं वो, और खाने योग्य जो खली है, ओजेला है, जीवाणु खाद है, राइजोबियम, दलहनी खादों के लिए, दलहनी फसलों के लिए एजेटोबैक्टर, बिना दलहनी फसलों के लिए नील हरित सेवाल, एजोस्पेरियम, ये जो पीएसबी, ये जो सारे के सारी चीजें हैं इनका हम संतुलित रूप से उपयोग कर सकते हैं।
1: वासावा, बहुत ही बढ़िया जानकारी दिया खेत बचाओ अभियान के बारे में। सहायक कल्याण दत्त वर्मा, सहायक निदेशक कृषि, राजस्थान किसान आयोग जयपुर, आज कार्यक्रम में आप पधारा, इतना आपको खूब खूब धन्यवाद। और देखो सा, इतनी बढ़िया जानकारी दिया छे, तो आगे आपने लोग ये सुनानो छे, क्योंकि कोरो कोरो धन्यवाद आपको ने दिया करा, तो बेगू बेगू दे दो सा, सुनो सा, जो अपना अतिथि छे वाने भी सुनावा सा।
2: बिल्कुल।

0: पर तंवर जी देखो चिरमी का गाय गीत के साथ ही आज को जो कार्यक्रम छे खेती बाड़ी को टाइम पूरा होतो जा रो छे तो दिराओ आगे आशा ने
1: और तमारा हाड़ा ने
0: चालार करा राम राम सा।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

वही सुनते हैं फिल्म संगीत का यह पहला गाना फिल्म नौटंकी साला से। इसे गाया है फलक शब्बीर ने, और फलक शब्बीर ने ही इसके बोल लिखे हैं, और म्यूजिक है माइकी का।

आइए अगला गाना सुनते हैं, फिल्म दिल तो बच्चा है जी से। इसे आवाज दी है मोहित चौहान ने, बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, अगला गाना सुनते हैं फिल्म सांवरिया से। आवाज है शान की, बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है मोंटी ने।

आओ अगला गाना सुनते हैं फिल्म जब वी मेट से। आवाज है मोहित चौहान की, बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अगला गाना सुनते हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की, बोल लिखे हैं मजरूह ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, आइए अगला गाना सुनते हैं फिल्म कभी अलविदा ना कहना से। आवाजें हैं शफाकत अमानत अली और शंकर महादेवन की, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यानी 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 आप सुनेंगे न्यूज एट 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार, 9:30 पर चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से, अन्य मुकाबलों में पुर्तगाल, क्रोएशिया और कोलंबिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एफआईएच प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया। हॉकी इंडिया ने ब्रिटेन में होने वाले एक्सपोजर टूर के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा और आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी, 16 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से, जहां हर दिन फीफा विश्व कप में रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा, वहीं इसी ग्रुप में कतर, बोस्निया हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। अन्य मुकाबलों में पुर्तगाल, क्रोएशिया और कोलंबिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप के मुकाबले में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने अगले राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल दूसरे हाफ में डेनियल मुनोज ने किया। मुनोज ने एक डिफ्लेक्टेड शॉट पर गोल दागकर कांगो के मजबूत डिफेंस को भेदा। कांगो की मजबूत डिफेंस को देखकर एक समय लग रहा था कि ये मुकाबला ड्रॉ रहेगा, लेकिन मैच के 76वें मिनट में आखिरकार मुनोज को सफलता मिली और उन्होंने कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिलाई। कोलंबिया ने अपनी लीड को अंत तक बनाए रखा। इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने ग्रुप में 2 मुकाबले जीतकर टॉप 2 में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। ग्रुप एल के मुकाबले में क्रोएशिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पनामा को 1-0 से हरा दिया। क्रोएशिया के खिलाफ मिली हार के साथ ही पनामा के अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीद समाप्त हो गई है। क्रोएशिया ने ये अहम जीत टीम के स्टार खिलाड़ी लुका मोड्रिक के 200वें मैच में हासिल की। पहले हाफ में पनामा ने क्रोएशिया के मुकाबले ज्यादा बेहतर खेल दिखाया। 23वें मिनट में पनामा को गोल करने का एक शानदार मौका मिला था, जब जोस लुइस रोड्रिगेज ने जोरदार हेडर लगाया। हालांकि क्रोएशिया के गोलकीपर डोमिनिक लेवाकोविच ने शानदार बचाव करते हुए गोल बचा लिया। मुकाबले के 54वें मिनट में क्रोएशिया 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रहा। जोसेफ स्टेनिसिक के दाईं ओर से आए शानदार लो क्रॉस को सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए एंटे बुदमिर ने

0: गोल में तब्दील कर दिया। इस जीत के साथ ही क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है।
1: Croatia are up and running and are into contention in Group L. Panama are eliminated with a game to spare.
0: Group L का एक और मुकाबला इंग्लैंड और घाना के बीच गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इंग्लैंड ने मैच में पहला बड़ा मौका 13वें मिनट में बनाया जब डेक्लान राइस की लंबी दूरी की फ्री किक गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई। पहले हाफ में जूड बेलिंगहैम का एक शॉट घाना के दो डिफेंडर ने ब्लॉक किया। वहीं राइस ने नोनी मडुके के क्रॉस पर हेडर लगाया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मैच के अंतिम मिनटों में इंग्लैंड ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी लेकिन अंत में दोनों टीम को एक एक अंक से ही संतोष करना पड़ा। ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। ह्यूस्टन स्टेडियम में मिली पुर्तगाल की जीत के नायक स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे। उन्होंने मुकाबले में 2 गोल किए। पुर्तगाल ने इस जीत के साथ ही राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। टीम के 2 मुकाबलों के बाद अब 4 अंक हो गए हैं और टीम ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है। रोनाल्डो के अलावा पुर्तगाल की ओर से नूनो मेंडेस और राफेल लियाओ ने भी 1-1 गोल दागा। पुर्तगाल ने शुरुआत से ही मुकाबले का शानदार आगाज किया। मैच के 6वें मिनट में ही रोनाल्डो ने अपनी क्लास दिखाई और टीम के लिए पहला गोल दागा और टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। इस गोल के साथ ही रोनाल्डो ने ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। वो 6 विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पुर्तगाल की बढ़त को मैच के 17वें मिनट में ही नूनो मेंडेस ने दोगुना कर दिया। नूनो ने फ्री किक का भरपूर फायदा उठाया और मैच का दूसरा और अपना पहला गोल दागा। मैच के 29वें मिनट में उज्बेकिस्तान के लिए अजीज नोज गनीब ने एक शानदार गोल किया लेकिन फाउल होने के कारण इसे अमान्य करार दे दिया गया। इसके बाद मैच के 39वें मिनट में रोनाल्डो ने अपना दूसरा और मैच का तीसरा गोल दागा। रोनाल्डो के इस गोल के दम पर पुर्तगाल ने पहले हाफ का अंत 3-0 की बढ़त के साथ किया। दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान के गोलकीपर नेमातोव गलती से अपना ही गोल कर बैठे जिसके चलते पुर्तगाल की बढ़त 4-0 हो गई। मैच के 87वें मिनट में राफा लियाओ ने 5वां गोल दागा और पुर्तगाल की धमाकेदार जीत पर मोहर लगा दी।
1: It's Portugal on the surge with Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. He's done it again from setback to statement. Portugal 5, Uzbekistan 0.
0: Mukesh Kumar, Portland.
2: और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिगेज को मात दी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने टूर्नामेंट में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को 3 गेमों के कड़े मुकाबले में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। चोट से उबरकर वापसी कर रही त्रिशा ने अपनी जोड़ीदार गायत्री के साथ मिलकर स्पेन की जोड़ी को 21-12, 14-21, 21-13 से 51 मिनट तक चले पहले दौर के मुकाबले में पराजित किया। भारतीय जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जापान की सुमीरे नाकाडे और मियू ताकाहाशी से होगा। त्रिशा और गायत्री ने मैच की शुरुआत मजबूत की और पहले गेम में 8-3 की बढ़त बना ली। स्पेन की जोड़ी ने वापसी की कोशिश करते हुए लगातार 4 अंक हासिल करते हुए अंतर को कम करने की कोशिश की लेकिन भारतीय जोड़ी ने फिर से दबदबा बनाते हुए 17-11 की बढ़त बनाई और गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में पाउला और लूसिया ने बेहतर खेल दिखाया और 11-7 की बढ़त बना ली। भारतीय जोड़ी ने कड़ी चुनौती दी लेकिन स्पेन की जोड़ी का मुकाबला बराबरी पर रखने में सफल रही। निर्णायक तीसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने फिर से 11-6 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। इस जोड़ी ने इसके बाद अपनी लय बनाए रखी और बिना ज्यादा परेशानी के मैच अपने नाम कर लिया। पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर में रौनक चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। उन्होंने पहले फ्रांस के एनोगार्ट रॉय को 21-19, 21-16 से हराया, फिर चीनी ताइपे के कुओ कुआन लिन को 13-21, 21-14, 21-10 से मात देकर आगे बढ़े। चौहान के सामने अब शुरुआती दौर में हमवतन एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम की चुनौती होगी। 5वीं वरीयता प्राप्त किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में अपने ही देश के संगीत दयानंद से भिड़ेंगे। भारत की ओर से महिला सिंगल्स में भी मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी। इसमें रक्षिता श्री संतोष रामराज, श्रियांशी वली शेट्टी, अनमोल खरब, देविका सिहाग, तानिया हेमंत, आकर्षि कश्यप व तन्वी शर्मा हिस्सा लेंगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।

0: और अब बात हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन में होने वाले एक्सपोजर टूर के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
1: युवा भारतीय टीम की अगुवाई कप्तान खैदेम शिलेमा चानू करेंगी। निधि और एंगिल हर्षारानी मिंग टीम की गोलकीपर होंगी। डिफेंसिव यूनिट में पूजा शाहू, सुप्रिया मधु, एफ लालवी अक्सियामी, लालने ईरपुई और पार्वती टोपनो शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान चानू, तनुजा टोपो, सुप्रिया कुजूर, पूजा मलिक, विनिमा धन, गीता यादव, रोशनी आइंद और तनुश्री दिनेश कुडू को शामिल किया गया है। फॉरवर्ड लाइन में सुखबीर कौर, शशि खासा, लालविन पुई, निशा मिंज, पूर्णिमा यादव, काजल सानिका, चंद्रकांत माने और कृष्णा शर्मा को जगह दी गई है। 9 दिन का ये एक्सपोजर टूर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड सीनियर महिला टीम के खिलाफ 2 मैचों से शुरू होगा। इसके बाद लीले शॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड और बेल्जियम की साथी जूनियर टीमों के खिलाफ मैच होंगे। यह दौरा जूनियर एशिया कप और अन्य आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारियों का अहम हिस्सा है। इस दौरान खिलाड़ियों को विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलेगा, जिससे उनके खेल और आत्मविश्वास में सुधार होगा। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैंप।
0: उधर FIH प्रो लीग के लंदन लेग के अपने पहले मैच में भारत ने 1 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दी। सुनते हैं इस मैच का हाल।
2: के लिए अभिषेक ने 21वें, नीलाकांता शर्मा ने 24वें, सुखजीत सिंह ने 34वें और राजेंद्र सिंह ने 52वें मिनट में गोल किए। वहीं पाकिस्तान के तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में कल खेले गए रोमांचक मुकाबले के 8वें मिनट में नदीम अहमद ने गोल करके पाकिस्तान को शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में जबरदस्त वापसी की। उन्होंने 2 गोल किए और फिर तीसरे और चौथे क्वार्टर में एक एक गोल करके मजबूत बढ़त बना ली। क्रेग फुल्टन की टीम ने मैच के अंतिम 10 मिनट में कुछ गलतियां की, जिससे पाकिस्तान को 2 गोल करने का मौका मिला। इसी के साथ जीत का अंतर तो कम हुआ, लेकिन मुकाबले ने एक रोमांचक मोड़ ले लिया। खेल के हर पहलू में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा। मैन इन ब्लू ने 30 बार सर्कल में प्रवेश किया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी केवल 9 बार ही ऐसा कर पाए। उन्हें 11 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जबकि पाकिस्तान को 8 मिले। हालांकि वे केवल 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल पाए, जबकि पाकिस्तान ने 3 गोल किए। इस जीत के साथ भारत ने FIH प्रो लीग के आखिरी 2 राउंड के लिए यूरोप के मौजूदा दौरे पर अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। रॉटरडैम में हुए पिछले लेग में उन्होंने अहम मैचों में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी और मेजबान नीदरलैंड्स को हराया था। प्रो लीग के 13 मैचों में भारत की यह तीसरी सीधी जीत है। अब इस टीम के 13 अंक हो गए हैं। हरमनप्रीत सिंह की टीम ने 1 मैच शूटआउट में जीता है, 2 मैच ड्रॉ खेले हैं और 7 मैच हारे हैं, जबकि पाकिस्तान ने अब तक अपने सभी 13 मैच गवाए हैं। इस जीत के साथ भारत वर्ष 2016 के बाद से सीनियर और जूनियर स्तर पर पाकिस्तान से नहीं हारा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैंप।
0: और अब बात धैर्य और एकाग्रता वाले खेल निशानेबाजी पर। जर्मनी के सोहन में भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम जूनियर इवेंट में रजत पदक जीता। पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत टीम और मिक्स टीम स्पर्धाओं में लगातार अच्छे प्रदर्शन से भारतीय टीम पहले स्थान पर बरकरार है। वंशिका चौधरी और शिवा नरवाल की भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। शिवा नरवाल ने कल 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में रजत पदक और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक पर निशाना साधा। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में एक और रजत पदक जीता, जिसमें शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने मिलकर शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर फिनिश किया। भारत के अभियान को तब और मजबूती मिली जब प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष जूनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिससे देश को चैंपियनशिप का 5वां स्वर्ण पदक मिला। 25 मीटर पिस्टल महिला जूनियर टीम स्पर्धा में अंजलि महेंद्र भागवत, परीक्षा गुप्ता और मिथिला की तिकड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत 5 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैंप।
0: और अब बात क्रिकेट।

0: क्रिकेट पर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया था, वहीं दूसरे मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड्स को भारत ने 95 रन से मात दी। ICC ने एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उधर रांची में छोटा नागपुर रॉयल्स ने झारखंड प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अब बात एथलेटिक्स पर। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी 100 मीटर बाधा दौड़ खिलाड़ी ज्योति जी ने आज राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन एशियाई खेलों को क्वालिफिकेशन मानक हासिल कर शानदार वापसी कर ली है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर

0: रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: भारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स ए सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी।
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: वी हैड 26 डेलीगेट्स फ्रॉम
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूह के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
4: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 समय

0: बकर मलबे की खेड़ से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्यूर जिले के याजानी स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजानी और होजपोटेन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरि और कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चि मिन्ह शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चि मिन्ह शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ति पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लुपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत।

0: बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए। मैं सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है समाधि।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की, और फिल्म का नाम है इशारा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है पूजा के फूल।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम सुन लीजिए, हिमालय की गोद में।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है संगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते दो लाइन चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ, और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने, और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेस और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो खुद भी कहीं न कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

सुनवाएंगे फिल्म संगीत का पहला गीत फिल्म कर्तव्य से। आशा जी और मोहम्मद रफी की आवाज़ें हैं। कफी अजहर का लिखा गीत सुनेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में।

हम आकाशवाणी वासवाड़ा के एफएम माही चनी से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर रात्रि के 10 बजे अब प्रस्तुत फिल्म संगीत।

0: लो ये कंबल लो, बहुत सर्दी है।
1: अरे लो ना कंबल, से भी कोई जिद है।
2: और तुम?
1: अरे अपना क्या, हम तो सिपाही हैं सिपाही।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: लता जी के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफएम माही चैनल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज

0: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमेरिकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं। FM 1.3 MHz की आवृत्ति पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।